आज रविवारको दिन द स्पेशल डे 12 जुलाई ईयर 2026 आप सबके लिए शुभ हो। एक बार फिर मैं हूँ आपके साथी फिरोज खान, आपके लिए अभी से लेकर 12:30 बजे तक आपका यात्रा कराएंगे यादों के साथ चुने हुए लोकप्रिय संगीत, पुराने फिल्मों से निकाली हुई हिट्स ऑफ 40s, 50s, 60s और 70s और उसके बाद देयर आर गोल्डन ईयर्स ऑफ बॉलीवुड हिट्स ऑफ 90s। तो साथ दीजिए, बहुत खूब लुकिंग फॉरवर्ड टू द प्लेजर ऑफ योर कंपनी टिल 12:30।

थोड़ी सी मुड़कर बाहर देखें. ब्यूटिफुल विंटर मॉर्निंग हेयर इन ब्रिस्बन. इट्स गोइंग टू बी 19 to 23 डिग्रीज. समटाइम्स वी फॉरगेट, वी मस्ट थैंक गॉड फॉर दिस ब्यूटिफुल कंट्री एंड द पीस विथ विच वी लिव इन हेयर. सो वाई डोंट वी टेक अ ब्रेक बिफोर यादों का सफर, बिफोर डाउन मेमरी लेन, एंड लेट्स जस्ट रिफ्लेक्ट ऑन दिस ब्यूटिफुल डे. And thank God we are alive.

0: जी हाँ, थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल डे। अगर आप ब्रिस्बेन में हैं तो मुड़कर बाहर देखें। ब्रिस्बेन ब्यूटीफुल वन डे एंड परफेक्ट द नेक्स्ट, एंड इट इज परफेक्ट टुडे आउट देयर, सनशाइन एंड 21 to 22 degrees। एंड हियर्स द थिंग, दिस 12th ऑफ जुलाई ईयर 2026 विल नेवर एवर कम बैक अगेन इन दिस यूनिवर्स। और फिर हम आपको ले चलते हैं यादों के सफर में। As you listen to our songs or selections, think, where were you when you first heard this song?
1: वक्त लकीरें खींचता है इंसानी चेहरों पर, बीते समय पर वक्त चला जाता है। ये लकीरें ठिठक जाती हैं, छूट जाती हैं, देर तक अपने होने का एहसास जगाती। इन लकीरों पर चंद नई लकीरें उभरती हैं, कुछ पहले से और ज्यादा साफ और अलग। ये अपनी अलग छाप या पहचान या छोड़ जाती हैं यादें।
2: यादों का

आपकी मंजिल हूं मैं, मेरा मंजिल आप है। 1962 की फिल्म अनपढ़, संगीतकार मदन मोहन, गीतकार राजा मेहंदी अली खान, आवाज लता मंगेशकर। हर रविवार को 10 से लेकर 12 बजे तक स्टेशन 79 ब्रिस्बेन पर आपके साथ फिरोज खान, यादों के सफर के साथ आपको ले चलते हैं डाउन मेमोरी लेन। उसके ओंठों पे जब नाम मेरा आया होगा, खुद को रिसवाई से फिर कैसे बचाया होगा। सुन के तो आना था फसाना मेरे बर्बादी का, क्या उसको अपना सितम याद आया ना होगा।

0: दिलीप कुमार और मीना कुमारी की फिल्म 1958 की फिल्म यहूदी, शंकर जय किशन के संगीत पर, साथ में गीतकार शालेंद्र, ऑफकोर्स आवाज मुकेश। यह है संगीत की जानकार और मैं हूं आपका साथी फिरोज खान। हर रविवार को 10 से लेकर 12 बजे तक, आपको याद रहे हर रविवार को बहुत खूब आप सुनिएगा रेडियो 79.1। सुबह 6 बजे से 7 बजे तक आपके लिए पेश किया जाता है डिवोशनल संगीत, और इसके बाद आप सुनते हैं इस्लामिक प्रोग्राम हजरत मौलाना फजल दाद के साथ सवाल और जवाब, और फिर 8 से लेकर 9 बजे तक आप सुनते हैं वेद वाणी, और फिर मैं आपके साथ हो जाता हूं 10 बजे से 10 से 12.5 बजे तक यादों के सफर के साथ, चुने हुए लोकप्रिय संगीत पुराने फिल्मों से निकाले हुए। मैं हूं आपके साथ ही फिरोज खान, और आपके याद रहे 12.5 बजे से 5 बजे तक हर रविवार को टेलीफोन लाइन 3279-1791 आपके लिए खुलते हैं। जी हाँ, वी रिसीव कॉल्स ऑन रेडियो 79.1 एवरी संडे फ्रॉम 12:30 to 5 p.m. and take dedication, request or even comments from you. We'll listen to you because you listen to us. Sue and Roy will be here from 12:30 to 5 p.m. every Sunday. Filhal, har raviwar ko main hoon aapke saath hi Firoz Khan 10 se lekar 12 baje tak.
1: Aapne bana liya hai gehra sambandh, सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि समाज सेवा, इसी स्टेशन के सहारे हम करते हैं आपके साथ फीजी समाचार, भेंट वार्ता, स्थानीय समाचार, सामाजिक सूचनाएं। सुनते रहिए संगीत की झनकार।
0: जी हाँ, सुनते रहिए संगीत की झनकार, और आपके साथ फिरोज खान हर रविवार को यादों का सफर, जिसको जारी रखते हुए इस बार अशोक कुमार की फिल्म 1966 की फिल्म ममता, संगीतकार रोशन और मजरू सुल्तानपुरी, गीतकार आवाज स्वरपथम। शुरू में आप सुनेंगे लता मंगेशकर तो, और उसके बाद मोहम्मद रफी और साथ में सुमन कल्याणपुर, और गाना एक ही गीत जिसको दोनों ने गाया है, रहे ना रहे, यू डिसाइड हु वाज बेटर। और चलो हम अशोक कुमार के डायलॉग भी इसमें शामिल करेंगे।
2: चिट्ठी कब लिखोगे?
3: एक तो मैंने लिख ली है, वो बम्बई से डालूंगा, फिर लिखूंगा जहाज पर से, फिर एडन से, फिर मार्शल से, और फिर लंदन पहुंचकर।
2: मुझे फूल तो नहीं चाहा।
3: ऐसी बातें कर रही हो तुम? मनीष ने जिंदगी में सिर्फ देवयानी को चाहा है, और कोई लड़की कभी उसके जिंदगी में नहीं आएगी, कभी नहीं। मैं तुम्हारे पास रहूं या न रहूं देवयानी, तुम्हारी याद हमेशा मेरे दिल में रहेगी। देवयानी, एक बार फिर तो कहो, रहे न रहे हम, मैं क्या करेंगे, बन के कली, बन के सबा, आगे वफा में।

0: मैंने सोचा था हमारी ये जुदाई भी थोड़े ही समय के लिए है।
1: तुमने ठीक ही समझा था उसकी चिट्ठी से, लेकिन मैं कुछ नहीं समझ सका।

0: अब
1: 1966 के अशोक कुमार की फिल्म ममता, गीतकार मजरू सुल्तानपुरी और संगीतकार रोशन, आवाज पहले लता मंगेशकर फिर उसके बाद सुमन कल्याणपुर। इसमें हम अशोक कुमार के डायलॉग भी शामिल किया। संगीत की जानकार पर ये है यादें। आपको याद रहे हर रविवार को 10 से लेकर 12:30 बजे तक मैं हूं आपका साथी फिरोज खान ऑन दिस ब्यूटीफुल डे ऑफ 2026। डाउन मेमोरी लेन और यादों का सफर को जारी रखते हुए इस बार शामिल करते हैं साल 1973। ऑफ कोर्स द पार्टनरशिप द केमिस्ट्री ऑफ अमिताभ बच्चन एंड जय बहादुरी ऑन द स्क्रीन। फिल्म अभिमान, संगीतकार एस डी बर्मन, आवाज लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी, गीतकार मजरू सुल्तानपुरी। जिंदगी का लम्हा लम्हा जिंदगी बर्बाद है, जिस तरफ मैं जा रहा हूं रास्ता दुश्वार है। ए मेरी जिंदगी, मैं जिधर भी देखता हूं ए रेत का दीवार है। मुझे सोच कर एक सपना, बेहतर है तू भूल ही जाना। न मेरा इंतजार करना, न मेरा इंतजार।

बिखरी तेरी जो जुल्फ घटा याद आ गई, बिखरी तेरी जो जुल्फ घटा याद आ गई, फिर मैं कदे की मस्त फिजा याद आ गई।

0: रेडियो वो जिसमें महबूब का दम हो, रेडियो वो जिसमें महबूबा की सांसें हो, रेडियो वो जिसमें समाज सेवा हो। सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि समाज सेवा, इसी स्टेशन के सहारे हम करते हैं आपके साथ। फीजी समाचार, भेंट वार्ता, स्थानीय समाचार, सामाजिक सूचनाएं, सुनते रहिए।
1: और अब चलो छोटी सी कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, वापस आकर एक बार फिर जारी रखेंगे यादों का सफर। यही वो जगह है, यही वो स्टूडियोज है, फॉर द लास्ट 40 इयर्स मैं इस फिल्म में मैं हूं आपके साथ ही फिरोज खान, और यह है ब्रायन सैलस। यही वो जगह है फिल्मी धुन। टेक अ कॉफी ब्रेक, विल बी बैक विद कमर्शियल ब्रेक आफ्टर एंड कैरी ऑन एंड टेक यू डाउन मेमोरी लेन एक बार फिर यादों का सफर वापस आकर।

0: आपने बना लिया है गहरा संबंध, सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि समाज सेवा इसी स्टेशन
1: भाई,
0: के
1: मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
2: तो ओमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
1: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
2: अरे ओमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
1: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
2: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
1: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
2: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
3: एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक के बाद हम एक बार फिर आप सबका स्वागत करते हुए कि आपका साथ हमारा जमा रहेगा 12:30 बजे तक। तो चलो जारी रखते हैं यादों का सफर। आपको याद रही है संगीत की जानकार, बातों की जानकार नहीं। मोर म्यूजिक लेस टॉक। और हाँ, जब आप हमारे गीतों को सुने, यादों का सफर चलते हैं साथ, तो रिमेम्बर, रिफ्लेक्ट ऑन वे वर यू व्हेन यू फर्स्ट हर्ड द सॉन्ग्स।
4: संगीत की जानकार पर ये है यादें।

कहे के चले इतनी मुलाकात बहुत है। मैंने कहा रुक जाओ अभी रात बहुत है, आंसू मेरे थम जाए तो शौक से जाना, ऐसे में कहाँ जाओगे, बरसात बहुत है।

प्यार की मीठी मीठी किसक, प्यार की मीठी मीठी किसक, आंखों में पहले पहले प्यार की नमी, सोचों में किसी की खूबसूरत चेहरा और तरोताजा गुलाब के सुर्ख फूल।

0: यह है संगीत की जानकार आपके साथ फिरोज खान। रविवार के सुबह 10 से लेकर 12:30 बजे तक आपके लिए यादों का सफर। उसके बाद आपके लिए हम पेश करते हैं दी अदर गोल्डन एज ऑफ बॉलीवुड हिट्स ऑफ 90s। फिलहाल यादों का सफर हिट्स ऑफ 40s, 50s, 60s और 70s से निकाली हुई चुने हुए संगीत। और यादों के सफर को आगे बढ़ाते हुए इस बार हम छोटी सी मोमेंट यानी एक लम्हा गुजारेंगे यादों के सफर में मनोज कुमार के साथ, और इसको पेश करेंगे रंजना कुमार।
1: 1967 में बनी फिल्म उपकार से देश प्रेम पर बनी फिल्मों की सफल शुरुआत के बाद मनोज कुमार ने देशभक्ति की खुशबू में डूबी पूरब और पश्चिम, शोर और क्रांति जैसी हिट फिल्में दी। मनोज कुमार ने अपनी फिल्मों के जरिए लोगों को देशभक्ति की भावना की गहराई का एहसास कराया और वो हर दिल अजीज फिल्मकार बन गए। इसी देश प्रेम की बदौलत उनके चाहने वाले उन्हें भारत कुमार के नाम जाने लगे। मनोज कुमार ने 1957 में बनी फिल्म फैशन के जरिए बड़े पर्दे पर कदम रखा। लीड रोल में उनकी पहली फिल्म कांच की गुड़िया जो कि 1960 में आई थी। उसके बाद उनकी दो और फिल्में पिया मिलन की आस और रेशमी रुमाल आई, लेकिन उनकी पहली हिट फिल्म हरियाली और रास्ता थी। उन्होंने वो कौन थी, हिमालय की गोद में, गुमनाम, दो बदन, पत्थर के सनम, यादगार, शोर, सन्यासी, दस नंबरी और क्लाक जैसी अच्छी फिल्मों में काम किया और उनकी आखिरी फिल्म 1995 में आई थी मैदाने जंग। लाख

संगीत की झनकार में एक लम्हा साथ तुम्हारे 1701 ब्रिस्बेन पर आप सुन रहे हैं और लम्हा हम गुजार रहे हैं मनोज कुमार के साथ में। मनोज कुमार को 1972 में फिल्म बेईमान के लिए बेस्ट एक्टर और 1975 में रोटी कपड़ा और मकान के लिए बेस्ट प्रोड्यूसर का फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया था। बाद में 1992 में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा गया था और 2008 में मनोज कुमार का नाम मध्य प्रदेश सरकार ने भारत रत्न के लिए भी नॉमिनेट किया था। मनोज कुमार ने अब तक जो भी फिल्में बनाई हैं, सभी फिल्मों के एक्सपीरियंस का उपयोग करके उन्होंने एक और फिल्म बनाई क्रांति, जिसने उनके करियर को चरम तक पहुंचाया और साथ ही साथ खराब दौर से गुजर रहे दिलीप कुमार की भी शानदार वापसी करवाई। 19th सेंचुरी के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की कहानी बयां करती फिल्म क्रांति की सफलता का अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि उन दिनों में 1.5 करोड़ की लागत से बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 10 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस किया। चलिए ऐसे फिल्म क्रांति का ये गाना आपके लिए पेश करते हैं, लता और नितिन की आवाजों में, जिंदगी की न टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी।

एक लम्हा साथ तुम्हारे और मैं हूँ आपके साथी रंजना कुमार। मनोज कुमार ने अपनी फिल्मों के माध्यम से भारतीयता की खोज की। अपनी भावनात्मक फिल्मों की बदौलत उन्होंने मुनाफे से ज्यादा नाम कमाया। यही वजह है कि फिल्म जगत में मनोज कुमार को आज भी उनकी देशभक्ति से परिपूर्ण फिल्मों के लिए जाना जाता है। मनोज कुमार को दादा साहेब फाल्के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। उन्होंने कई हिट फिल्में दी और उन हिट फिल्मों में पत्थर के सनम, क्रांति, पूरब और पश्चिम, उपकार, दो बदन, शोर, शहीद, वो कौन थी, सन्यासी, रोटी कपड़ा और मकान, देश नंबरी, दस नंबरी, हिमालय की गोद में, नीलकमल, बेईमान, पहचान, गुमनाम, साजन, मेरा नाम जोकर, आदमी, हरियाली और रास्ता, अमानत, डॉक्टर विद्या, संतोष, यादगार जैसी फिल्में रही हैं। और इसके साथ साथ में क्लार्क, जो अच्छी नहीं चली थी, वैसे ये फिल्म डूब गई थी, सावन की घटा, शिरडी के साईं बाबा, अपने हुए पराए, कलयुग और रामायण, अनीता, मैदान जंग, पूनम की रात, बनारसी ठग, फूलों की सेज, शादी और न जाने और कितनी फिल्मों में उन्होंने काम किया और कितनी फिल्मों को उन्होंने बनाया। तो आज हम लम्हा गुजार रहे थे मनोज कुमार के साथ में और उनके फिल्मों के कुछ गानों को भी बारी बारी से आपके लिए पेश किया। तो जाते जाते चलते हैं मनोज कुमार के फिल्म पत्थर के सनम का ये गाना आपके लिए मुकेश और लता की आवाज में हम छोड़े जा रहे हैं। गीत के बोल हैं, महबूब मेरे महबूब, तू है तो दुनिया कितनी हसी है।

संगीत संसार में हर हफ्ते नई एल्बम्स जारी होते रहते हैं, ऐसे में क्या नया और क्या सुनने के काबिल है इसकी पकड़ रखना जरा मुश्किल है ना। हर एल्बम को सुनने के बाद हम चुन चुन कर बेहतरीन

सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि समाज सेवा, इसी स्टेशन के सहारे हम करते हैं आपके साथ। फिजी समाचार, भेंट वार्ता, स्थानीय समाचार, सामाजिक सूचनाएं, सुनते रहिए।

0: ये है 1701। आप सुन रहे हैं हिट्स ऑफ 90s और रिसेंट पास हिट, ऐसे गीत जो हिट परेड में अपनी छाप छोड़ चुके हैं। ऐसे ही गीत से हम अपने कार्यक्रम का शुरुआत करते हैं, रिसेंट पास हिट्स और हिट्स ऑफ 90s, ऐसे गीत जिसको एक बार सुनकर बार बार सुनने को जी चाहता है।
1: रेडियो वो हो जिसमें महबूब का दम हो, रेडियो वो जिसमें महबूबा की सांसें हो, रेडियो वो जिसमें

ये है 1701। आप सुन रहे हैं हिट्स ऑफ 90s और रिसेंट पास्ट हिट, ऐसे गीत जो हिट परेड में अपनी छाप छोड़ चुके हैं। ऐसे ही गीत से हम अपने कार्यक्रम का शुरुआत करते हैं, रिसेंट पास्ट हिट्स और हिट्स ऑफ 90s, ऐसे गीत जिसको एक बार सुनकर बार बार सुनने को जी चाहता है।

0: और इसके साथ साथ आपके साथ फिरोज खान आपसे इजाजत लेते हुए आशा करते हैं कि आप और हमारा साथ फिर जमा रहेगा अगले रविवार को 10 से लेकर 12:30 बजे तक। इन द मीन टाइम 3279701 our telephone number is open. Sue and Roy are there to receive your calls and dedicate songs for you, and indeed they will take requests from you as well. So ye hai sangeet ki jankar. Until next time, next Sunday 10 to 12:30. Khush rahiye.
1: Anuj, koi acha sa lawyer suggest karo na, aisa jo meri sari baat dhang se sune, samjhe aur phir mere tarike se mujhe samjhaye.
2: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
1: अरे वाह, इनका पता बताना।
2: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.

है रेडियो 79.1 जिसके द्वारा आप हर रोज हमारे हिंदुस्तानी कार्यक्रम को सुनते हैं। याद रहे हमारा टेलीफोन नंबर है 3279701। अगर आप सूचनाएं या एडवर्टीजमेंट भेजना चाहते हैं तो आप कृपया हमारे पास फैक्स करें। हमारा फैक्स नंबर है 3279-2506, 3279-2506।

हेलो एंड वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं आपकी अपनी पहचान रेडियो विजबानी 1701. हमारे स्टूडियोज में ठीक 12:30 बज चुके हैं. जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर आज रोहित सिंह हमारे स्टूडियोज में नहीं है, तो आपके साथ यह शाम का सफर रेडियो विजबानी अयम. तो आप सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार. अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल. रेडियो ब्रिस्बेन, आप सुन रहे हैं हमारे स्टूडियोज 17 माइल्स रॉक्स ब्रिस्बेन से. बार फिर आज आपके साथ. सो होप यू ऑल एंजॉयिंग अ ब्यूटीफुल वीकेंड आउट देयर.

चल रहा है राही इस जीवन के सफर में, और कहीं जरूर मिल जाएंगे दोस्त इस जीवन के डगर में। जिंदगी बन जाए मस्तानी हर एक पहर में, मुस्कुराते चले दोस्तों सब मिलकर प्रेम और हम सफर में। हैप्पी वीकेंड, हैप्पी संडे। साथ साथ हम ये कहना चाहते हैं, अगर आज आपकी शादी की सालगिरह है, जन्मदिन है, कुछ भी आप खुशियां सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप सभी को हमारी तरफ से बहुत सारे से मुबारकबादी। डेडिकेशन के लिए और फरमाइशी के लिए हमारा फोन नंबर है 3279-1701, नहीं तो आप हमारे मोबाइल पर SMS कर सकते हैं। सफर में दोस्तों, संडे सफर पर एक बार फिर मार्च एक से एक बढ़कर आपके मनोरंजन के लिए गीत लेकर उपस्थित हुए हैं। कुछ पुराने हिट्स, नए हिट्स, रिमिक्सेस वगैरह से लेकर अभी से लेकर ठीक 4 बजे तक साथ है हमारा आपका। सो एंजॉय।

जरन का गीत आपने सुना मुकेश और गीता दत्त की आवाज में। दोस्तों आप सुन रहे हैं आपकी अपनी पहचान रेडियो विश्वानी 1701। अगर आपने भी ट्यून इन किया है, स्वागत है आप सभी का रेडियो विश्वानी एम पर। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर आज रोहित सिंह हमारे स्टूडियोज में नहीं है, तो आज आपके पास आपके साथ एक बार फिर चलते हैं आगे बढ़ते हुए, अगला गीत सुनते हैं जिसे मैंने लिया है मोहम्मद रफी और उषा मंगेश की आवाज का गीत है। फिल्म का नाम है मिस्टर नटवरलाल।

0: बहुत प्यारा सा गीत दोस्तों आपने सुना, और इस गीत को मैंने लिया था फिल्म नटवर लाल से। आप सुन रहे हैं आपकी अपनी पहचान रेडियो विश्वानी 1701।
1: सांसों की माला पे सिमरूं मैं।
2: LKR Events proudly presents Once Upon a Time World Tour 2026. This July, experience the magic live. Ustad Rahat Fateh Ali Khan with his son Shahzaman Ali Khan live in concert, performing his greatest Bollywood and Qawwali hits. 23rd July 2026 at Brisbane Central Main Auditorium. Book your tickets now at drytickets.com.au. Presented by LKR Events, bringing unforgettable experiences to Brisbane.
0: तो देखते हैं दोस्तों, इंसान जब अकेले बैठता है, अकेला बैठा इंसान कभी अकेला नहीं बैठता, उसके साथ बैठे हो तमाम उलझने जिनमें वो हर पल फंसा हुआ होता है, उसके साथ बैठे हो सारी परेशानियां जो अपनों और परायों से मिले हो, उसके साथ बैठी है वो भावनाएं जिनके साथ हर कोई खेल गया हो, और साथ साथ में उसके साथ वही बैठे झूठे रिश्ते जो सिर्फ मतलब से निभाए गए हो, और उसके साथ बैठी होती है वो सारी पारिवारिक जिम्मेदारियां जिनको पूरा करने के लिए वो अपने ख्वाबों को हमेशा के लिए बदल देता है। तो अकेले मत बैठिए, इसीलिए दोस्तों क्या बात है कि खाले पीले जीले, और इसकी फरमाइश है, ये स्पेशली स्पेशल फरमाइश हमारे पास है, ये कपलवर से दिया गुप्ता की ओर से दिया। तो आपने बहुत अच्छी बात कही है, खाले पीले जीले, जिंदगी क्या है, बस खाले पीले जीले, यही तो।

0: दोस्तों, हमारे पास डेडिकेशन आई थी इस गीत के लिए वहाँ विक्टोरिया पॉइंट से, जहाँ मैं सुन रही दिया गुप्ता, और दिया ने इस गीत को डेडिकेट किया था आरतिका के लिए, साथ में सीमा और रनिता के लिए। आप सुन रहे हैं रेडियो बिजवानी 1701 किलोहर्ट्ज पर, हमारे स्टूडियोज 17 माइल्स रॉक्स ब्रिस्बेन से। इस वक्त हमारे स्टूडियोज में 5 मिनट रह गए हैं 1 बजने में।
1: राधे श्याम की जय हो, सियाराम की और जय हो बंबई धाम की। ई है

पानी का धोबी तालाब देखो देखो, यहाँ रेती पे पानी का भाव देखो देखो।

0: आपस में जंग, हाँ आपस में जंग, हाँ आपस में जंग, जय घुमा के। अरे समंदर में जैसे है घुल गई भंग, ये रंग देख के मैं हो गया दंग। तो क्या समझे, यह बंबई नगरिया तू देख बबुआ, यह बंबई नगरिया तू देख बबुआ,
1: यह बंबई नगरिया। और पर्दे पर अमिताभ बच्चन, किशोर कुमार की आवाज का गीत आपने सुना, फिल्म का नाम डॉन। बहुत प्यारा सा गीत दोस्तों। हम चलते हैं फरमाइश की ओर, बढ़ते हैं। बहुत से लोग जो है अपना गीत सुनने के लिए इंतजार कर रहे हैं। रेडियो बिस्वानी आईएम आप सुन रहे हैं, और इस वक्त बस 3 मिनट रह गए हैं एक बजने में हमारे स्टूडियोज में। हम चलते हैं ग्रीनिका सिडनी की ओर। फरमाइश है हमारे पास रजन और मालती प्रसाद की ओर से आप दोनों के लिए अगला गीत।

0: अजरे दोस्तों, हमारे साथ शामिल हो गए थे ग्रीन एकर सिडनी से रचिन और मालती प्रसाद।
1: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
2: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
1: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
2: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
3: फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन, तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਫਾਇਰ ਐਂਟਸ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਜਾਂ ਫਾਇਰ ਐਂਟਸ QLD ਖੋਜੋ ਜਾਂ 132 ANT ਯਾਨੀ ਕਿ 132-268 ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ। ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ। ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਧੇਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 98,000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਘਰ ਜਲਦੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ $2 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ 4100 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ 53,500 ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ।
0: चलते हैं दोस्तों एलए की और लेस वेगस की ओर। और लेस वेगस में हमारा प्रोग्राम सुन रही हैं दक्षा सोलंकी। दक्षा, चलते हैं आपके लिए, सुनते हैं कौन सा गीत है। तो फिल्म का नाम है ये वादा रहा।

0: Un solo alí.
1: ¡Hola!

0: पैर किशोर कुमार और माफ कीजिएगा पादे पैर ऋषि कपूर पूनम धीलन के लिए, लेकिन आवाज थी किशोर कुमार आशा भोसले की। लास वेगास से हमारे पास फरमाइश आई थी दक्षा सोलंकी की ओर से। आप सुन रहे हैं रेडियो विजवानी, आपकी अपनी पहचान और ब्रिस्बेन टाइम। हमारे स्टूडियोज में 9 मिनट हो गए हैं 1:00 है शाम का सफर। अगर आप रोए के इंतजार में है दोस्तों, एक बार फिर आज रोए हमारे स्टूडियोज में नहीं है तो पता है ना, यू हैव टू पुट अप विद मी। चलते हैं अगले गीत की फरमाइश है, हम चलते हैं सैक्रामेंटो यूएसए की ओर, विजेन और कामनी की ओर से। अगली फरमाइश है हमारे पास, बहुत प्यारा सा गीत है, ब्यूटीफुल सॉन्ग, और गीत भी क्या है आप खुद ही सुनिए।
1: दिल बोले तो
2: हार्ट हार्ट
3: हमारा यार, सौदा सौदा।
2: ओहो
4: दोनों डील कर,
0: मेरे अगल बगल है, मैं तेरे अगल बगल हूँ।

0: बहुत प्यारा सगे, तू मेरे अगल बगल है सक्रमेंटो से। हमारे पास फरमाइश आई थी जहाँ मैं सुन रहे विजयन आओ कामनी। आप सुन रहे हैं रेडियो विश्वानी।
1: LKR Events proudly presents Once Upon a Time World Tour 2026. This July, experience the magic live. Ustad Rahat Fateh Ali Khan with his son Shahzaman Ali Khan live in concert, performing his greatest Bollywood and Qawwali hits. 23rd July 2026 at Brisbane Central Main Auditorium. Book your tickets now at drytickets.com.au.

से ज्यादा अपनों की फिक्र करता है। बिल्कुल कौन है वो, आपको पता है, बिल्कुल पिता की तरह, जो खुद टूटकर ही परिवार को संभालते रखता है। और हमारे साथ इस वक्त सफर कर रहे हैं शैला पाक से विजय और शशि। थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक एंड थैंक्स फॉर जॉइनिंग मी। चलते हैं आप दोनों के लिए अगला गीत।

सबसे पहले तो शुक्रिया सेकंड ईयर स्टूडेंट्स का, जिन्होंने हम फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए आज ये शानदार पार्टी दी है। थैंक्स अ लॉट, वी मिस यू। हमारे लिए कॉलेज का ये आखिरी दिन है और मैं जानता हूं कि आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ न कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

नाम कयामत से कयामत, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। बात सच है कि पापा से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं, पापा से ताकतवर भी कोई नहीं है दुनिया में। आप सुन रहे और इस गीत में हमारे साथ शामिल हो गए थे विजय और शशि फ्रॉम शैला पार्क, जो इस वक्त हमारे साथ ड्राइव पर है। एंड हैव अ नाइस आफ्टरनून ड्राइव। मरम्बा डाउन्स की ओर बढ़ते हैं। क्रिस और विनी चलते हैं आप दोनों के लिए अगला गीत। विनी, थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक आउट देयर। चलते हैं आप दोनों के लिए बहुत प्यारा सा गीत।

0: और इसकी तो फरमाइश करने वाले थे मरम्बा डाउन से क्रिस और विनी सिंह।
1: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असीं होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असीं रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है अते लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो।
2: LKR Events proudly presents Once Upon a Time World Tour 2026. This July, experience the magic live. Ustad Rahat Fateh Ali Khan with his son Shahzaman Ali Khan live in concert, performing his greatest Bollywood and Qawwali hits. 23rd July 2026 at Brisbane Central Main Auditorium. Book your tickets now at drytickets.com.au. Presented by LKR Events, bringing unforgettable experiences to Brisbane.
0: केडरन पार्क की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। केडरन पार्क से फरमाइश आई हमारे पास जोनी और सविता की ओर से। आप दोनों के लिए सुनते हैं अगला गीत है और इस गीत को मैंने लिया है अलग वर्जन पर।

0: अरे इस गीत को फरमाइश करने वाले थे जूनी और सविता फ्रॉम कैडरन पार्क। दोस्तों हम चलते हैं एश ग्रोव एवेन्यू की ओर। फरमाइश है हमारे पास एश ग्रोव एवेन्यू से रजीना चौधरी और आनंद चौधरी की ओर से आप दोनों के लिए अगला गीत लता जी की आवाज।
1: जब जिंदगी मौत पर है
2: लेकिन कब कैसे
1: मालूम नहीं। चलो मुझे घर पहुंचा दो।

0: लता जी की आवाज का गीत की फरमाइश करने वाले थे रजीना चौधरी, आनंद चौधरी फ्रॉम एशग्रोव एवेन्यू।
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
2: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
0: अरे शाम का सफर रेडियो विश्वानी एम है दोस्तों, इसे आप सुन रहे हैं यहाँ हमारे स्टूडियो से 17 मास रॉक ब्रिस्बेन से और फॉरेस्ट लेक से। फरमाइश है हमारे पास मिस्टर एंड मिसेस असित राम की ओर से, तो आप दोनों के लिए अगला गीत।

ब्यूटीफुल सॉन्ग दोस्तों, हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे से इस गीत के लिए फीडबैक आ गए हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लविंग दिस सॉन्ग। और मैंने सोचा कि हमारे जो मौसा जी है फॉरेस्ट लेक से, मिस एंड मिसेस सेतराम, हमेशा रोमांटिक गीत की फरमाइश करते रहते हैं, तो मैंने सोचा कि इससे ज्यादा रोमांटिक उनके लिए और क्या हो सकती है। आप सुन रहे हैं रेडियो बिस्वानी, जगजीत सिंह की आवाज की गजल की फरमाइश है हमारे पास ऑकलैंड न्यूजीलैंड से प्रवीणा की ओर से, और साथ साथ में सैक्रामेंटो यूएसए की उनके बहन कामनी नारायण की ओर से। आप दोनों की फरमाइश पर सुनते हैं गजल जगजीत सिंह की आवाज में।

0: जगजीत सिंह की आवाज का ब्यूटीफुल गजला फरमाइश आई थी हमारे पास ऑकलैंड न्यूजीलैंड से, जहां में सुने प्रवीणा और साथ साथ में कामिनी नारायण फ्रॉम सैक्रामेंटो यूएसए।
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स, घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखें। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
2: भरत मान कोल दो ही चीजा हुंदिया ने, एक शांति ते दूजा युद्ध। व्हाइट हिल स्टूडियोज लेके आ रहे ने पंजाब दा एक्शन हीरो देव करोड़ इन एंड एज सरपंच।
3: सरपंच सिर्फ ते सिर्फ पिंड दा होना चाहिदा, किसी राजनीतिक पार्टी दा नहीं।
2: सरपंच एडिशनली स्टारिंग जैस्मीन बाजवा, गुरबाल सिंह एंड सरबजीत चीमा। देखो सरपंच 10 जुलाई नु तुहाडे नेड़े सिनेमा घरां च।
4: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत, जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन, जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां, इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
0: तुझे वो मंजिल दो, मैं वो नहीं हूँ दोस्तों। और डगर नहीं हूँ तुझे सुकून दे सकूँ, मैं वो सफ़र नहीं हूँ। जानती हूँ कि मेरे साथ उम्र बिताना चाहते हैं आप, मगर मैं साथी हूँ तुम्हारे हम सफ़र नहीं। साथ साथ में तेरे मेरे बीच में सारा ज़माना पड़ता है, तेरे रास्तों से मिलकर जाऊँ, मैं वो नहीं हूँ। आप सुन रहे रेडियो विजवानी, हमारे साथ शामिल हुए आमला सिंह। अगला गजल की फरमाइश किया है फ्रॉम शिकागो।

शिकागो की आमला सिंह की फरमाइश पर आपने इस गजल को सुना। हम चलते हैं दोस्तों लॉस एंजलिस की ओर, जहां पर हमें सुन रहे विनय और प्रमिला। तो आप दोनों के लिए अगला रिमिक्स, मुझे पता है आपको रिमिक्स बीच अच्छी लगती है। दोनों के रिमिक्स पर दुपट्टा तेरा नौ रंगा।

0: हूँ। जरूर दोस्तों, हमारे पास फरमाइश आई थी एलआई से, जहाँ हमें सुन रहे हैं विनय और प्रमिला।
1: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन का निवेश कर रही है, ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो।
2: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
3: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
2: ऐसा क्या खास है वहाँ?
3: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
2: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
3: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
4: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
5: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
4: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience aa. Te law di entry cases nu handle karan ch vi oh expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
5: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
4: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

और दोस्तों हमारे पास फीडबैक आई है एंजेला पुरन की ओर से, हमारे रेडियो विज वाणी की जो मैनेजरस है, थैंक यू सो मच अंजी भाभी। चलते हैं आपके लिए अगला गीत पेश है, आप सुन रहे रेडियो विज वाणी, आपकी अपनी पहचान।

ब्यूटीफुल रिमिक्स सॉन्ग आपने सुना दोस्तों, और आज इस गीत को मैंने डेडिकेट किया था हमारे रेडियो वाणी के मैनेजर अंजला पूरन को. थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर ब्यूटीफुल फीडबैक. आप सुन रहे रेडियो वाणी 1701 किलोहर्ट्ज़ पर. हमारे साथ शामिल हो गए हैं कौन, हम चलते हैं सिडनी की ओर. अनिता सिंह, हाय अनिता, चलते हैं आपके लिए पेश है एक और गीत.

दोस्तों, इस गीत को फरमाइश करने वाली थी अनिता सिंह फ्रॉम सिडनी। आप सुन रहे हैं रेडियो विश्वानी, आपकी अपनी पहचान। और 2:15 बज चुके हैं, हमारे स्टूडियोस में है शाम का सफर, संडे शाम पर आपके साथ सु और शामिल हो गए हमारे साथ इस गीत में। अगला गीत में मैक्स प्रसाद फ्रॉम कैलिफोर्निया USA।

0: और इस गीत को इस गीत में हमारे साथ शामिल होते हो गए थे मैक्स प्रसाद जो हमें सुन रहे हैं कैलिफोर्निया यूएसए में।
1: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
2: नवी क्वींसलैंड सरकार 4000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। अते लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वध डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
0: और हमारे स्टूडियोज में 22 मिनट हो गए हैं 2:00 दोस्तों। सैक्रामेंटो यूएसए से फरमाइश आई हमारे पास विजयन की ओर से और विजयन आपकी फरमाइश पर सुनते हैं हमें तुमसे प्यार कितना।

उसका फरमाइश किया था विजयन जो हमें सुन रहे हैं वहाँ कैलिफोर्निया सैक्रामेंटो यूएसए में। आप सुन रहे हैं रेडियो विस्पानी आपकी अपनी पहचान, यह शाम का सफर।

0: और दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपकी अपनी पहचान रेडियो विश्वानी 1701। आज हमारा आपका साथ रहेगा ठीक 4 बजे तक।
1: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
2: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
1: ऐसा क्या खास है वहाँ?
2: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
1: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
2: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

चलते हैं दोस्तों अगले गीत के लिए। फरमाइश है हमारे पास जिम्बुम्बा से, और जिम्बुम्बा से फरमाइश किसने किया है? सोनिया फ्रॉम जिम्बुम्बा।

की तो फरमाइश करने वाली थी सोनिया फ्रॉम जिम बुम्बा. आप सुन रहे हैं रेडियो विश्वानी दोस्तों, और इस वक्त हमारे स्टूडियोज में 3:15 बज चुके हैं. साथ हमारा आप करेगा शायद आज 4 बजे तक. चलते हैं पार्किंसन की ओर. फरमाइश आई हमारे पास आसिक और आसमा की ओर से आप दोनों के लिए अगला रिमिक्स. सुनते हैं अगला गीत.

0: जरूर दोस्तों हमारे साथ शामिल हो गए थे आसिको आसमा जो हमें सुन रहे पाकिस्तान में.
1: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है. एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है. ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है. यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है. लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है. यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं.
2: नवी क्वींसलैंड सरकार 4000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है. अते लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है. अ प्लेस टू कॉल होम खोजो.
3: LKR Events proudly presents Once Upon a Time World Tour 2026. This July, experience the magic live. Ustad Rahat Fateh Ali Khan with his son Shahzaman Ali Khan live in concert, performing his greatest Bollywood and Qawwali hits. 23rd July 2026 at Brisbane Central Main Auditorium. Book your tickets now at drytickets.com.au. Presented by LKR Events, bringing unforgettable experiences to Brisbane.
0: चलते हैं फरमाइश की ओर बढ़ते हैं. अगला गीत की फरमाइश है हमारे पास मेल्ली वेस्ट से लक्ष्मी की ओर से. लक्ष्मी चलते हैं आपके लिए पेशे अगला गीत.

साथ शामिल हो गई थी लक्ष्मी जो हमें सुन रही है मेनली वेस्ट में इस गीत में। दोस्तों इसी के साथ साथ तीन ही बजने वाले हैं हमारे स्टूडियोज के घड़ी पर, हमारा आपका साथ रहेगा ठीक 4 बजे तक। अर्ली अप्रिशिएटर सैक्रामेंटो यूएस, इनमें विजय और कामनी जो बहुत देर हो चुके हैं वहां पर, स्टिल दे एंजॉइंग द प्रोग्राम, अभी भी प्रोग्राम सुन रहे, फरमाइश के परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो आई रियली अप्रिशिएट दैट, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी। चलते हैं आप दोनों की फरमाइश पर, सुनते हैं अगला गीत है दमादम मस्त कलंदर।

मैडम मार्स कलंदर की फरमाइश आई थी हमारे पास सेक्रामेंटो यूएसए से विजेन और कामनी की ओर से। तो संडे है यहाँ ब्रिस्बेन में दोस्तों, और वहाँ पर यूएसए में तो सैटरडे नाइट है। तो देखे क्या संडे को आप दाल भरी पूरी, दाल पूरी खाते हैं ना, तो सुनते हैं उसी पर एक गीत। शायद आपके घर में आज दाल पूरी बना होगा।

आप सुन रहे हैं रेडियो विस्वानी, आपकी अपनी पहचान। और रेडियो विस्वानी आप सुन रहे हैं हमारे स्टूडियोज यहाँ 17 मास रॉक्स ब्रिस्बेन से है। शाम का सफर और संडे शाम पर आज आपके साथ सू है। और समय हुआ हमारे स्टूडियोज में 9 मिनट हो गए हैं 3 बजकर। हम चलते हैं ऑकलैंड न्यूजीलैंड की ओर और हमारे साथ फिर से जुड़ी है प्रवीणा। हाय प्रवीणा, चलते हैं आपके लिए अगला गीत।

0: तो इस गीत को फरमाइश करने वाली थी प्रवीणा फ्रॉम ऑकलैंड न्यूजीलैंड. आप सुन रहे हैं रेडियो विश्वानी.
1: नवी क्वींसलैंड सरकार 4000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है. लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है. अ प्लेस टू कॉल होम खोजो.
2: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है. असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन. असी होर भी वध डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां. 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां. स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां. नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी. असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो. डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो.

फिर हमारे पास फरमाइश आई थी इस गीत के लिए. हमारा प्रोग्राम सिनेमेली वेस्ट में लक्ष्मी, आप सुन रहे हैं रेडियो विश्वानी, आपकी अपनी पहचान. और इस वक्त हमारे स्टूडियो में 20 मिनट हो गए हैं 3 बजकर. चलते हैं 8 मास प्लान्स. शामिल हो गई हमारे साथ अल्पना. हाय अल्पना.

और जरूर हमारा प्रोग्राम सुन रही हैं अल्पना फ्रॉम माइट मास प्लेन्स. अल्पना थैंक्स फॉर योर फीडबैक. चलते हैं अगला गीत जो है थोड़ा सा अलग है, इससे लेटेस्ट एल्बम से मैंने लिया है.

फरमाइश है, हमारे पास तो सोग लगीत के लिए हम चलते हैं सिडनी की ओर। जी हाँ, बैंकस्टाउन सिडनी से सनी और रमीजा की ओर से आप दोनों के लिए अगला रिमिक्स के।

fresh. I'm Lagati Sanyora Miza from Bankstown, Sydney.

जरूर हमारे साथ शामिल हो गए थे मेलबर्न से अल्फ्रेड और किरण प्रसाद. आप सुन रहे हैं रेडियो विश्वानी, आपकी अपनी पहचान. हम चलते हैं केडरन पार्क की ओर. दोस्तों एक बार फिर हमारे साथ शामिल हुए जोनी. जोनी आपके लिए अगला गीत.

अरे जरूर, हमारे साथ शामिल हो गए थे जॉनी फ्रॉम केरन पार्क इस गीत में। दोस्तों इसी के साथ साथ 4:15 बज चुके हैं, आप सुन रहे हैं रेडियो विजवानी 1701 किलोहर्ट्ज पर, हमारे स्टूडियोज यहाँ 17 माइल्स रॉक्स ब्रिस्बेन से। तो चलते हैं अगला गीत के लिए। डेडिकेशन है हमारे पास अल्पना की ओर से फ्रॉम 8 माइल्स प्लेन, एंड अल्पना इज डेडिकेटिंग द नेक्स्ट सॉन्ग टू हर बेस्ट फ्रेंड रोहितेश, जो आज फिजी में नहीं लेकिन मेलबर्न में हमें सुन रहे हैं। हाय रोहितेश, वेलकम टू ऑस्ट्रेलिया।

किशोर कुमार की आवाज़ का ब्यूटीफुल सॉन्ग, बहुत ही रोमांटिक हो रहे हैं रोहित तेज वहाँ मेलबर्न में, जो कैलिफोर्निया से फिजी, फिजी से मेलबर्न, और मेलबर्न में हमें सुन रहे हैं रोहित तेज। वंस अगेन एंजॉय योर हॉलीडे। आप सुन रहे हैं रेडियो विजवाणी।

देखिए दोस्तों, वैसे हमारा समय होता है 5 बजे तक, 2:30 to 5, लेकिन आज एक बार फिर रोहित सिंह हमारे स्टूडियोज में नहीं है, इसीलिए थोड़ा ही जल्द मैंने प्रोग्राम शुरुआत किया था। और जैसे पता है कि लोग प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं, आई एम जस्ट गेटिंग अ बिग फीडबैक आउट हियर, तो इसीलिए हमने सोचा कि 4 o'clock नहीं, हम आपके लिए 4:30 तक टाइम दे सकते हैं।

0: फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन, जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां, इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
2: चलते हैं हमारे पास एक मास प्लेन्स के अल्पना की ओर से एक और फरमाइश है। अल्पना, सुनते हैं आपकी अगली फरमाइश।

फुल चॉइस अल्पना, आपकी चॉइस और हमारी चॉइस एकदम बिल्कुल सही है, एकदम आपकी चॉइस और मेरी चॉइस बिल्कुल ही मिलती है। चलते हैं एक बार फिर विक्टोरिया पॉइंट दोस्तों, और चटनी गीत की रिक्वेस्ट है हमारे पास दिया गुप्ता की ओर से।

और इस चटनी मिक्स में हमारे साथ शामिल हो गई थी, यानी कि फरमाइश करने वाली थी दिया गुप्ता फ्रॉम विक्टोरिया पॉइंट। चलते हैं रेड बैंक की ओर, और रेड बैंक से हमारे पास फरमाइश है गंगा और गीता की ओर से। हम डैडी पिक्चर से लेवा गए थे।

और हाँ दोस्तों, ऐसे के साथ साथ हमारे स्टूडियोज में बस एक मिनट रह गए हैं 4:30 बजने में। हमने आपसे वादा किया था हाफ एन आवर और ज्यादा आपको टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग माय प्रोग्राम एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर फीडबैक। और हमारी अगली मुलाकात है नेक्स्ट सैटरडे को, शायद मैं फिर और कुछ लेटेस्ट लेकर आने वाली हूँ, तो इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो हमारे बात आपके साथ हो जाएगी 5 बजे से शशि चौकन साथ, उनका जरूर दीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर जॉइनिंग द प्रोग्राम वंस अगेन। नमस्ते, खुदा हाफिज, टेक केयर, लव यू ऑल, गुड बाय।

हाँ जी, मेरी आवाज की दुनिया के दोस्तों, मैं शशि जोखन आ चुकी हूँ आपका साथ देने के लिए। आज है रविवार का दिन और 12 तारीख आज का दिन है, 12 तारीख जुलाई, और देखते ही देखते हम मध्य महीने में पहुँच गए हैं और बस चंद दिन और बचे हुए हैं और ये महीने भी ऐसे ही फिसल जाएंगे। मगर देखिए, आप हैं मुसाफिर इस सफर में और मैं हूँ आपकी हम सफर, एक रंगीन शाम आपके नाम के साथ रेडियो ब्रिजवानी 1701 पर। तो याद रखिए कि आज एक बार फिर हम एक हरा भरा कार्यक्रम लेकर आए हैं आपके लिए और आप भी इसी तरह हमारा साथ देते ही रहेंगे, ठीक है ना? और अगर आप इसी तरह देंगे तो ये जो माहौल हम कायम करने जा रहे हैं, खुशियों भरा, उमंगों भरा, उमंगों के साथ, ये समय जो है 5 से 7 बजे तक ऐसे ही निकल जाएंगे, ठीक है? होले होले हम एक दूजे का साथ देते ही रहेंगे और इसी तरह 7 बजे तक हम आपका साथ देंगे और एक हरा भरा कार्यक्रम। आगे चलकर आपको बताऊंगी क्या क्या आज के कार्यक्रम में होने को है, मगर चलो शुरुआत करते हैं। बल्ले बल्ले बल्ले बल्ले, क्योंकि न्यूजीलैंड में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे। बहुत ही खुशी भरा माहौल यहाँ पर रहा। वैसे तो मेलबर्न में भी गए थे, वहाँ भी क्या किसी से कम नहीं, उनको लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया।

0: बिजली दिया नंगिया तारा और तारा तारा तारा जे कोल एना दे आओगे ता प्यार.
1: These girls are like naked live wires. If you get too close, you'll get an electric shock of love.

जी, जैसे हमने आपसे कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी न्यूजीलैंड के दौरे पर आए थे, और उससे पहले वो मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया भी गए थे, वहाँ पर भी उन्हें बहुत सारा प्यार मिला। उससे पहले वो इंडोनेशिया गए हुए थे, वहाँ भी उनको बहुत सारा सम्मान मिला। और भारत और न्यूजीलैंड के रिश्तों में बहुत ही बदलाव आने वाले हैं, एंड यहाँ के जो जो प्रधानमंत्री है उन्होंने बहुत ही खुशहाल तौर से भारतीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत किया, और यहाँ पर लगभग 10,000 से ज़्यादा लोग ऑकलैंड में आए थे, और वहाँ पे मोदी जी का स्वागत हुआ। सभी कुछ उन्होंने बहुत ही बढ़िया अपना जो डिलीवरी स्पीच था उसको डिलीवर किए, एंड लोग बहुत ही खुश हुए। एंड यहाँ पर FTA के बाद कितने ज़्यादा जो न्यूजीलैंड और इंडिया के बीच में जो तालमेल है वो बढ़ने वाले हैं, और जो हमारे बीच जो बहुत सारे एक साथ मिलकर काम होने वाली है ये सब बढ़ने वाले हैं। तो देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी की जो ये यात्रा है बहुत ही बढ़िया गया, और बहुत ही गर्व की बात है कि 40 वर्ष बाद एक भारतीय प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड आए हैं। और मोदी जी इससे पिछली बार जब PM मोदी जी ऑस्ट्रेलिया आए थे तो उस समय तो हम भी वहां पर गए थे सिडनी में, और वहां पर दर्शन हुए मोदी जी का। एंड देखिए, ये न्यूजीलैंड का दौरा इतना समय क्यों लगा, लोग ऐसे सोच रहे हैं कि क्यों इतना समय लगा, मगर देखिए भारत एक इतना ऐसा देश है जो अपना समय चुनकर दूसरे देशों में जाते हैं, वहाँ से वहाँ पर अपना जो जो भी कार्य उनको करना होता है अपने समय के अनुसार वो करते हैं। ये जो इंतज़ार था, इतनी लंबी इंतज़ार, ये सब खत्म हुआ है, एंड बहुत ही खुशी की बात है। चलो एक और एक गीत सुनते हैं। कहते हैं ना, हम चाहे जहाँ भी बसे हुए हो मगर दिल है हिंदुस्तानी। ठीक है, आपका भी है ना, अपने देश पर गर्व होना चाहिए, और जहां पर आप आकर बाद में बसे हो उस देश को लेकर भी गर्व होनी चाहिए।

हाँ जी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। देखिए, दिल तो होना चाहिए हिंदुस्तानी, मगर हम आकर विदेश में बसे हुए हैं। हमारी जो रहन-सहन है, हमारी जो बोलचाल है, हमारी जो हरकतें हम करते हैं यहाँ पर, इसको लेकर बहुत ही सतर्क हो जाइए आप, क्योंकि अभी आपने देखा है दुनिया भर में क्या-क्या हो रहे हैं, कैसे-कैसे बातें सुनने को मिल रहे हैं। आपको तो पता ही है, आप भी सुन रहे होंगे। तो जिस भी हालात से आप गुजर रहे हो, जो भी आपके जो भी आप कर रहे हो, सोच समझ कर कदम उठाइए। ऐसी कोई भी हरकत ना कीजिए कि एक बंदे की वजह से पूरी कौम, पूरे देश, पूरे हमारी जो कम्युनिटी के लोग हैं, उनकी नाम की बदनामी हो। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम बहुत ही वनरेबल है इस समय। एंड हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जो भी करें, बस ठीक ठाक ही करें, कि ऐसा ना हो कि एक के पीछे सभी की बर्बादी हो। ठीक है, तो एनीवे, आज एक हरा भरा कार्यक्रम, जैसे हमने कहा, लेकर आएंगे छोटी छोटी बातें अपनों की, सेगमेंट ऑफ कोर्स हम लेकर आएंगे। समय सबसे कीमती है, ऐसा आपने शायद पहले सुने ही होंगे, मगर क्यों कीमती है ये हम जानेंगे। फिर पारिवारिक विषय आज एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, जो 6 बजे के बाद हम लेकर आएंगे। और टॉपिक आज का है कि घर का टॉक्सिक फैमिली एनवायरनमेंट पर हम बातें करेंगे। घर का जो टॉक्सिक फैमिली एनवायरनमेंट करता है आपकी मेंटल हेल्थ को खराब, तो हम आज बातें करेंगे उन

जरूर बता दीजिए। 6 बजे के बाद हम पारिवारिक विषय लेकर आएंगे, घर का टॉक्सिक फैमिली एनवायरनमेंट करता है आपकी मेंटल हेल्थ को खराब, ठीक है? तो ये है आज के टॉपिक। और न्यूज व्यूज ऐसे कुछ छोड़े मोड़े लेकर आएंगे, बॉलीवुड न्यूज, कुछ ऐसे अन्य न्यूज हम आपके लिए लेकर आएंगे। सो साथ देते ही रहिएगा। और आप सुन रहे हैं ऑफकोर्स एक रंगीन शाम आपके नाम, रेडियो ब्रिजवानी 1701 पर। आज रविवार की शाम 5 बजे से 7 बजे तक ये कार्यक्रम हर हफ्ते हम लेकर आते हैं, कोशिश रहती है ना। सो एनीवे, चलो सिकंदर नाचे नाचे, सलमान खान और रश्मिका पर फिल्माई गई ये गीत।

हाँ जी, इस फिल्म में सलमान खान के साथ जैसे हमने कहा रश्मिका काम की है, एंड आपको पता है रश्मिका एक ऐसी एक्ट्रेस है जो अपने बल पे अपनी जो बॉलीवुड में लाइफ बना रही है, मगर उनके जो पतिदेव है, क्या आपको पता है उनके जो पतिदेव है वो धुरंधर उन्हीं की बेबी है, ठीक है।

सो धुरंधर की किंग वही है. और सो आप सोचिए कितने सफल है ये कपल. ठीक है. सो जैसे हमने कहा कि एक हरा भरा कार्यक्रम लेकर आए हैं, और अभी मैं जरा फास्ट सॉन्ग्स बजा रही हूँ क्योंकि हमारे जो लिसनर्स है वो मिक्स लिसनर्स है, सभी एज ग्रुप के लिसनर्स होते हैं. सो मैं कोशिश करती हूँ कि सभी को खुश रखूँ. ठीक है.

जी फिल्म बॉडीगार्ड से ली गई ये नगमा। देखिए जो गाने होते हैं, गाने सिर्फ आवाज जो देते हैं वो उसी से गाने पॉपुलर नहीं होते हैं, बल्कि पर्दे पर नजर आए जो एक्टर्स होते हैं उनकी जो केमिस्ट्री भी इस गाने को एक यादगार गाना बना देती है। जो भी गाना आप सुनते हैं ना, तो ये इम्पॉर्टेंट है। सो कैन यू इमेजिन, जब एक फिल्म की तैयारी की जाती है, पहले तो स्टोरी लिखी जाती है, फिर बहुत सारे काम इन द बैकग्राउंड होती हैं, फिर उसमें कैसे कैसे गाने डाले जाएंगे, कौन से एक्टर एक्ट्रेस को चुने जाएंगे, कैसे कपड़े वो पहनेंगे, कैसे बातें करेंगे, कैसे कोरियोग्राफी कैसी होगी, ये बहुत ही मेहनत के काम होती है। एंड हम तो सिर्फ जाकर 2-3 घंटे में देखकर फिर हम अपने अपने तरह से उस जो फिल्म है उनको अच्छे बनाते हैं या कहते हैं बेकार की फिल्म थी। सो ये सभी बहुत ही मेहनत के काम होती है। और जैसे हम प्रोग्राम लेकर आपके लिए आते हैं ना, तो बहुत ही मेहनत के काम होती है, ऐसे नहीं कोई आकर बातें करने लगते हैं। सो इन द सेंस कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कौन से सॉन्ग बजाने हैं, गैप्स ना हो या वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो उम्मीद है कि जो भी आपके अनाउंसेस आते हैं, जो भी प्रोग्राम लेकर आते हैं रेडियो ब्रिजवानी 1701 पर, आपको पसंद आए। चलो रॉकी और रानी की ओर। आलिया और रणवीर पर फिल्माई गई ये सॉन्ग।

हाँ जी, मैं तो कहूंगी ये दोनों की केमिस्ट्री बहुत ही जची लोगों को। और आलिया भट्ट, आई मस्ट से, इतनी यंग है मगर क्वाइट अ फ्यू सीरियस मूवीज इन्होंने अभी तक कर चुकी हैं। देखिए, इट हेल्प्स जब कोई आपका थोड़े से भी सहारा दे दे, तो आपकी जो स्किल्स होती है, आप में जो हुनर होती है, वो बहुत ही बढ़िया ढंग से बाहर निकलती है। मगर हुनर होनी ही चाहिए ना, अगर ना हो तो फिर कैसे बाहर आएगी। मगर सहारे की ज़रूरत होती है कभी कभी, एंड इनको बहुत ही बढ़िया सहारा दिया है फिल्म इंडस्ट्री ने। एंड बहुत ही अच्छी तरह एक्टिंग कर लेती है अब, और इसके साथ साथ शादी भी कर ली है रणवीर कपूर के साथ, और एक बच्चे की माँ भी हो गई है। मैंने सुना नीतू कपूर बोलती रही थी कि आलिया बहुत ही स्ट्रिक्ट है अपने बच्चे के साथ, और बहुत अच्छी तरह उनको उनका पालन पोषण कर रही है। सो इज़न्ट दैट ग्रेट टू सी कि कोई एक छोटी सी बच्ची बड़ी होकर, और अभी और अन्य एक्टर एक्ट्रेस के मुकाबले में, एक्ट्रेस के मुकाबले में ये बहुत यंग है, मगर बहुत कुछ हासिल कर चुकी है अभी तक। एनीवे, आगे बढ़ते हैं, एक और गीत लेकर आए हैं आपके लिए, और इस बार शाहरुख खान की मूवी से हमने इस गीत को चुनकर लाई हूँ आपके लिए। एंड ऑफ कोर्स, कैसा है मौसम वहाँ पर? हाँ, मौसम बहुत ही बढ़िया है। मुझे कहा गया है कि 15 से लेकर डिग्री सभी वहाँ पर है। एंड ऑफ कोर्स शाम होते होते और भी कूल हो जाएंगी, ठीक है? मगर अभी तो आप सुनिए ये गीत, फिल्म दिलवाले से हमने इसे आपके लिए चुन कर लाए हैं। एक्चुअली शाहरुख खान और उनकी फेवरेट एक्ट्रेस काजोल पर फिल्माई गई ये सॉन्ग।

0: एक रंगीन शाम आपके नाम, सुनते रहिए।
1: हाँ जी, एक रंगीन शाम आपके नाम। और उम्मीद कर रही हूँ कि आप जहाँ भी हो, जिस हाल में भी हो, साथ दे रहे हो। एंड ये इस कार्यक्रम में खास तौर से हम आपको शामिल कर रहे हैं। अगर आप किसी भी कारणवश दुखित अवस्था में हैं, सो हम उम्मीद यही कर रहे हैं कि आज इस कार्यक्रम से आपको कुछ राहत मिले, ठीक है। एंड देखिए, दुख सुख जीवन का साथी है। कभी हमें इतना खुशी मिलती है और कभी इस तरह हम गम में डूब जाते हैं। मगर जो भी, जिस हालात में आप हो, आप खुद को लिफ्ट कीजिए एंड आप खुद को पॉजिटिव सोचने में मदद कीजिए, क्योंकि ये सभी आप ही के ऊपर है। आप ही खुद की मदद कर सकते हो।

0: बहुत ही बढ़िया, एक द बेस्ट एवर रोमांटिक सॉन्ग मैं कह सकती हूँ, बहुत ही खूबसूरती के साथ सारा अली प्लस रणवीर सिंह पर फिल्म आई गई। हाँ जी, मैं आपसे कहना चाहती थी कि ऑफिशियल डेट रिलीज जो धुरंधर थ्री है ये भी रिलीज होने को है, एंड अभी तक तो अनाउंस नहीं हुई है डेट, मगर बस एकदम तैयारी है, एंड बहुत ही जल्द आप इसकी जो थर्ड जो ऑफिशियली रिलीज होने वाली है धुरंधर थ्री, आप इसे देख सकेंगे। बहुत समय नहीं है, मगर 1 एंड 2 तो जो लोग देखे हैं बहुत पसंद किए हैं। वैसे वायलेंस कुछ हद तक बहुत ज्यादा थी, मगर लोगों ने इसे बहुत प्यार दिया, बहुत सारा इस फिल्म को देखकर लोग बहुत ही चकित रह गए हैं। जिनको पता नहीं कि दुनिया में हो क्या रहा है, उनको भी पता चला कि हो क्या रहा है। सो दैट वॉज दैट्स धुरंधर फॉर यू, एंड कुछ ही देर में धुरंधर की सॉन्ग आपके लिए लेकर आऊंगी। मगर देखिए, जैसे हमने कहा कि आज एक हरा भरा कार्यक्रम लेकर आए हैं आपके लिए, सदाबहार गाने भी लेकर आऊंगी, एंड जो पुराने गीतों की दुनिया में आपको लेकर चलूंगी, और मगर उसके उस बीच में मिली जुली सी नगमे आपके लिए हम पेश करेंगे। पारिवारिक विषय, जैसे हमने आपसे कहा कि आज की जो टॉपिक है इट्स रियली गुड, और आप जरूर सुनने की कोशिश कीजिएगा। और जो टॉपिक है वो है घर का टॉक्सिक फैमिली एनवायरनमेंट, जो होते हैं ना अलग अलग घरों में, अलग अलग फैमिलीज में फैमिली एनवायरनमेंट जो होती है वो अलग होती है, किसी दो घर का एक तरह का साइड ना हो। तो घर का जो टॉक्सिक फैमिली एनवायरनमेंट करता है आपकी मेंटल हेल्थ को खराब, ठीक है? तो हम जानेंगे टॉक्सिक फैमिली एनवायरनमेंट के बारे में, और मानसिक स्वास्थ्य को कैसे ये प्रभावित करती है, और इससे बचने के लिए क्या हम कर सकते हैं, ठीक है? तो बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, साथ दीजिए, 6 बजे के बाद हम इसे लेकर आएंगे आपके लिए। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप भी साथ दीजिए। तो चलते हैं, ये जो गीत है आप सभी जानते हैं इस गीत को, एंड
1: जिसको तू चाहे ए नबी तू बुला।

बजरंगी भाईजान, हाँ जी, बहुत ही बढ़िया फिल्म था ये भी, तो लोगों ने उसे बहुत पसंद किया और ये गीत आप सुन रहे थे उसी फिल्म से। हाँ जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में जैसे हमने पहले कहा, तो आपको तो शायद पता होगा, कुछ कुछ लोगों को नहीं भी पता होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दुनिया भर के विभिन्न देशों द्वारा लगभग 35 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। इनमें से कई देशों ने उन्हें अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया है, और ऐसे कई देश इनमें शामिल है, जैसे इंडोनेशिया है, भूटान है, रूस है, सऊदी अरब है, और संयुक्त अरब अमीरात यूएई है, फिलिस्टाइन है, और अफगानिस्तान है, अमेरिका है, नामीबिया है, गुयाना है, और ऐसे बहुत सारे देश, अन्य देश जैसे डोमिनिका, फिजी, पीएनजी और फ्रांस उसमें शामिल है। सो एक ऐसे प्रधानमंत्री जिसको बहुत सारा प्यार कई बड़े बड़े देश दे रहे हैं, और कई ऐसे लोग भी है, कई ऐसे देश भी है जो उनको बिल्कुल नहीं पसंद करते हैं। तो देखिए, किसी भी इंसान को हर कोई तो नहीं पसंद कर सकता ना। ये अपने अपने कभी कभी लोग अपने अपने तरह से उन्हें देखते हैं कि उनसे क्या लाभ उनको होता है, क्या लाभ नहीं होता है। तो ऐसे हम लोगों के बारे में कह जाते हैं, मगर जो इंसान इतना बढ़िया अपने देश के लिए कर रहे हैं ना। सो एनीवे, जब इतने बड़े बड़े देश उनको पसंद करते तो हम कौन है कहने वाले, हाँ। सो एनीवे, सो ये थी बातें कुछ। और इसके साथ साथ जब भारत की बात ही हो रही है, तो 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की घोषणा हो चुकी है। ग्लासगो में हुई कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स जनरल असेंबली की बैठक के दौरान हुई है ये। 2030 गेम्स की मेजबानी करने के लिए गुजरात भारत की शहर अहमदाबाद को चुना गया है। सो देखिए, ये भी एक बात है। सो एनीवे, कार्यक्रम को हम और आगे बढ़ा रहे हैं, और नए और पुराने गीतों का संगम, और बस चंद मिनटों में छोटी छोटी बातें जो है अपनों की सेगमेंट भी हम लेकर आएंगे, मगर उससे पहले आप सुनिए ये नगमा जो शायद आपको पसंद आ जाए। ये पिंगा बोल के करते हैं, इस ये जो सॉन्ग है दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा पर फिल्माई गई।

0: हाँ जी, मौसम आज कैसा है? 20 लगभग 20 डिग्रीज है, धूप निकली हुई है एंड लगभग रात होते होते 15-16 ऐसे हो जाएगा, मगर अभी तो बहुत ही बढ़िया मौसम है। तो जैसे हमने आपसे पहले कहा कि समय सबसे कीमती है, तो ये बात तो आपने शायद पहले भी सुने होंगे, मगर क्यों कीमती है? तो चलो जानते हैं छोटी छोटी बातें अपनों की सेगमेंट में।
1: थे वो गाय चराने गया था। तुम बात करने लगे, हंसी मजाक और गपशप, और देखते ही देखते शाम हो गई। वो अपनी गाय लेकर घर चला गया और अपना पूरा काम कर लिया, पर तुम्हारे हाथ में क्या आया? लकड़ियां कहाँ है? कुछ भी नहीं। समय चला गया, काम नहीं हुआ, यही जिंदगी है। कुछ लोग काम करके आगे बढ़ जाते हैं और कुछ लोग सिर्फ बातें करते रह जाते हैं। इसलिए याद रखो, समय सबसे कीमती है, वक्त कभी नहीं आता। अगर आज का दिन खाली चला गया तो कल पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचेगा।
0: हाँ जी, तो इसे हम एक बार फिर से
1: तुम
0: आपके।
1: लकड़ियां काटने गए थे, वो गाय चराने गया था। तुम बात करने लगे, हंसी मजाक और गपशप, और देखते ही देखते शाम हो गई। वो अपनी गाय लेकर घर चला गया और अपना पूरा काम कर लिया, पर तुम्हारे हाथ में क्या आया? लकड़ियां कहाँ है? कुछ भी नहीं। समय चला गया, काम नहीं हुआ, यही जिंदगी है। कुछ लोग काम करके आगे बढ़ जाते हैं और कुछ लोग सिर्फ बातें करते रह जाते हैं। इसलिए याद रखो, समय सबसे कीमती है, वक्त कभी नहीं आता। अगर आज का दिन खाली चला गया तो कल पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचेगा।
0: हाँ जी, ऐसे ऐसे बातें होती हैं, तो काम के समय काम कीजिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप काम नहीं करेंगे तो फिर आप पीछे रह जाएंगे, ठीक है ना? तो इतना ज़रूर याद रखिए कि काम बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अपने समय पर अपना काम निपटाना भी बहुत ही ज़रूरत है। तो देखिए, राहत फ़तेह अली खान, हाँ जी, कई बार उन्होंने शोज किए हैं, मगर जब जब वो शो करते हैं लोग पागल हो जाते हैं, उनकी आवाज के दीवाने होते हैं लोग। ब्रिस्बेन में थर्सडे 23 जुलाई को शो होने को है, और पर्थ और सिडनी का जो शोज है वो तो फुल ही हो चुके हैं, फुल हाउस। और इसके साथ साथ जो ब्रिस्बेन में होने को है, 70% टिकट्स बिक चुके हैं, और अगर आपने अभी अपने टिकट्स को नहीं लिए हैं तो मैं कहूंगी कि आप जल्द से जल्द ले लीजिए, क्योंकि हाउसफुल तो होने को ही है। आप मिस आउट हो जाएंगे। देखिए, चाहे जितने बार आप उनको देखे हो, मगर जाकर सुनिए जो माहौल क्रिएट की जाती है ना ऐसे शोज में, ये एक अमेजिंग, जो जी जी खुश हो जाता है। ट्राई करिए, जाइए, थोड़ा टाइम निकालिए, ऐसे ऐसे शोज भी देखिए, एंजॉय कीजिए, और खुद को इसमें ढालने की कोशिश भी कीजिए, क्योंकि इट्स अमेजिंग ना। तो मैं तो ये कहूंगी कि आप जरूर जाइए और देखिए ये शो। और चलो, उन्हीं की आवाज में, राहत फतेह अली खान की आवाज में ये गीत आपके लिए। बहुत ही प्यारा सा नगमा है, ये आवाज ही ऐसा है, राहत फतेह अली खान।

चलो, राहत फतेह अली खान की आवाज में आप सुन रहे थे ये नगमा। एंड अब हम चलते हैं, आपको 90s की एक गीत सुनाते हैं। होले होले चलिए हमारे साथ इस सफर में। सफर का नाम है एक रंगीन शाम आपके नाम, आप ही के नाम करते हैं, ठीक है।

जी बहुत ही बढ़िया से गीत शाहरुख खान और जय चावला पर फिल्माई गई। तो देखिए ये दोनों की जो जोड़ी है, लोग इनकी जोड़ी भी बहुत पसंद किए, एंड शाहरुख खान और जूही चावला इनके परिवार बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, एंड अभी भी इनकी दोस्ती उसी तरह कायम है। तो चलो अब हम चलते हैं पारिवारिक विषय की ओर, और घर का टॉक्सिक फैमिली एनवायरनमेंट करता है आपकी मेंटल हेल्थ को खराब, तो जाने क्या हम कर सकते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो देखिए परिवार का माहौल, परिवार का जो माहौल होता है, हमें अपनापन, इमोशनल सुरक्षा और आत्मविश्वास प्रदान करता है। लेकिन जब इसी परिवार में आपको लगातार आलोचना, अपमान और बेरुखी मिले, तो ये चिंता, तनाव, अवसाद और आत्मसम्मान में कमी की वजह से बन सकता है और बहुत ही टॉक्सिक हो सकता है। तो आपकी जो मेंटल हेल्थ केवल ऑफिस और दोस्तों के व्यवहार पर ही निर्भर नहीं करती है, आपके घर का माहौल भी आपके मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर डालता है। ज्यादातर लोग घर में अपने परिवार के बीच खुद को इमोशनली रूप से सुरक्षित महसूस करते हैं। दरअसल घर के सदस्यों से मिलने वाले प्यार और जो अपनापन है, इससे आप उनके साथ बाहरी चिंता और तनाव से मुक्त महसूस करते हैं। लेकिन हर किसी के घर का माहौल एक जैसा तो नहीं होता है, ये आप मानते हैं ना? सभी के घर का माहौल अलग अलग होता है। कुछ लोगों को घर में आलोचना, गाली गलौज, हिंसक व्यवहार, नेगेटिविटी, उतार चढ़ाव और तुलना का सामना करना पड़ता है, ठीक है। और ये टॉक्सिक फैमिली एनवायरनमेंट आपकी मेंटल हेल्थ को खराब करने की बड़ी वजह बन सकता है। बच्चा हो या वयस्क, जब उसे टॉक्सिक फैमिली एनवायरनमेंट मिलता है, तो उसको तनाव, चिंता, अवसाद और आत्मविश्वास की कमी से मेंटल अनएबिलिटी का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। तो चलो हम जानते हैं कि इस समस्या से आप डील कैसे कर सकते हो। अब समस्या तो हो या ना हो, ये आप ही जानते हो, मगर अगर हो तो इससे डील कैसे कर सकते हैं। तो टॉक्सिक फैमिली एनवायरनमेंट मानसिक स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है? तो टॉक्सिक फैमिली एनवायरनमेंट तनाव, चिंता, आत्मसम्मान में भरोसा कम होना और अकेलापन की भावना को ट्रिगर करके आपकी मेंटल हेल्थ को प्रभावित कर सकता है। लगातार तनाव और चिंता का बढ़ना, हार्वर्ड हेल्थ के अनुसार यदि घर में हर समय विवाद, आलोचना या डर का माहौल बना रहता है, तो शरीर लगातार स्ट्रेस मोड में रहने लगता है। इससे स्ट्रेस हार्मोन जैसे कि कॉर्टिसोल लंबे समय तक बढ़ भी सकता है, जो आपके मानसिक और शारीरिक दोनों ही स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। ये क्रॉनिक स्ट्रेस डिप्रेशन का मुख्य कारण बन सकता है। तो आत्मसम्मान कमजोर होना, तो NCBI के अनुसार बार बार आपको नीचा दिखाना, दूसरों से तुलना करना या व्यक्ति की उपलब्धियों को नजरअंदाज करना आत्मविश्वास को कमजोर कर सकता है, ठीक है, समझ में आई? एनीवे, धीरे धीरे व्यक्ति खुद को अयोग्य समझने लगता है और निर्णय लेने में भी डर महसूस करता है। और अकेलेपन का खतरा महसूस होना कब होता है, ठीक है, WHO के मुताबिक भावनात्मक उपेक्षा और लगातार नेगेटिव व्यवहार व्यक्ति को सामाजिक रूप से अलग थलग महसूस करा सकता है। इससे डिप्रेशन को, यानी कि डिप्रेशन भी हो सकता है, डिप्रेशन का जोखिम बढ़ जाता है। तो देखिए टॉक्सिक फैमिली एनवायरनमेंट से मेंटल हेल्थ को खराब होने से बचाने के लिए क्या हम कर सकते हैं। मैंने सोचा कि इसे कंटिन्यू करूं, क्योंकि कंटिन्यू करने से आप अच्छी तरह इसे समझ पाएंगे। सो एनीवे, तो इसे बचाने के लिए हम करें तो करें क्या, तो अपनी सीमाएं स्पष्ट करें। हार्वर्ड कैनेडी स्कूल के अनुसार हर रिश्ते में
ये तय करना जरूरी है कि कौन सा व्यवहार स्वीकार्य है, कौन सा व्यवहार एक्सेप्टेबल है, ठीक है, और कौन सा नहीं, ये आपको जरूर क्लियर करना है। वरना आपके सामने जो बैठा व्यक्ति है उसको पता ही नहीं चलेगा आपके लिए क्या एक्सेप्टेबल है और क्या, यानी कि एक लाइन ड्रॉ करनी है। यदि कोई बार बार अपमान करता है या आपकी निजी जिंदगी में जरूरत से ज्यादा हस्तक्षेप करता है तो शांत तरीके से अपनी सीमाएं बताना जरूरी है। किसी के साथ सीमाएं तय करना उसके साथ रिश्ता तोड़ना नहीं है, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा करना होता है। खुलकर और सम्मानपूर्वक आप ये संवाद करें। तो NCBI के अनुसार परिवार के साथ बात करने से भी ये जो एंजाइटी है और तनाव को दूर किया जा सकता है। टॉक्सिक फैमिली में कई बार परिवार के सदस्य ये समझ ही नहीं पाते हैं कि उनका व्यवहार जो है वो आपको मानसिक रूप से प्रभावित कर रहा है। ऐसे में शांत माहौल में अपनी भावनाओं को उन्हें खुलकर बताएं। और जब ये दोनों डिस्कशन हो रहे होते हैं तो गाली गलौच नहीं, एक दूसरे के ऊपर चिल्लाना नहीं, एक दूसरे के साथ मारपीट नहीं करना, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये आप जरूर समझ लें। और गिल्ट से बाहर निकलें। बहुत से लोग टॉक्सिक फैमिली में सीमाएं तय करते समय खुद को गलत महसूस करने लगते हैं, ठीक है, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य जो लोग होते हैं उनके अनुसार अपनी भावनात्मक सुरक्षा को प्राथमिकता देना स्वार्थ नहीं बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अगर ज़रूरत पड़े तो आप थेरेपी भी ले सकते हैं। हार्वर्ड हेल्थ के अनुसार यदि पारिवारिक तनाव के कारण आपकी नींद, काम, रिश्ते या दैनिक जीवन प्रभावित हो रहे हैं तो किसी साइकोलॉजिस्ट से सलाह लेना फायदेमंद हो सकता है। थेरेपी आपको अपनी भावनाओं को समझने और तनाव से निपटने के बेहतर तरीके सिखा सकती है। देखिए, हर परिवार परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन लगातार अपमान, भावनात्मक शोषण, नियंत्रण और नेगेटिव व्यवहार को सामान्य मान लेना सही नहीं है। टॉक्सिक फैमिली एनवायरनमेंट व्यक्ति के आत्मविश्वास, मानसिक शांति और जीवन की गुणवत्ता पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। स्वास्थ्य सीमा बनाना, खुलकर बातें करना, ये सब आपकी जो मेंटल हेल्थ है इसमें एक थेरेपी का काम करता है। सो देखिए, अपनी रक्षा कीजिए और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम होगा। अगर आप हेल्प नीड करते हैं तो हेल्प लीजिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये थी कुछ बातें टॉक्सिक रिलेशनशिप के बारे में। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप ये किसी एक के लिए नहीं मगर हम सभी पर लागू होती है। ऐसा मत सोचना कि ये आपको ध्यान में रखकर कहा जाता है, ये सभी के लिए एक बहुत ही बढ़िया बात है। अगर आप समझ सके तो ज़रूर समझिए, क्योंकि नहीं समझेंगे तो आगे चलकर बहुत कुछ गलत हो सकता है। तो ये थे आपके लिए पारिवारिक

0: जी 6:20 हो चुके हैं और आप सुन रहे हैं एक रंगीन शाम आपके नाम और रेडियो ब्रिजवानी 1701 पर, और हर रविवार को 5 से 7 बजे तक हम आ जाते हैं। मैं शशि जोखन आपके साथ बिल्कुल 7 बजे तक रहूंगी। और हाँ जी, मुझे याद आया कि अगर आप आपके पास OCI कार्ड है, यानी कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, तो आपके लिए एक अच्छी सूचना है जो आपके लिए पेश करते हैं।
1: यहाँ पे एक बहुत अच्छा अपडेट लेकर आई है फॉर ऑल NRIs। आपके लिए अब इंडिया आना और भी यहाँ पे आसान हो गया है, क्योंकि सरकार ने फाइनली यहाँ पे लॉन्च कर दिया है इलेक्ट्रॉनिक ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में EOCI कार्ड भी यहाँ पे बोलते हैं। जिसका मतलब अब जब भी आप वहाँ पे इंडिया आएंगे तो आपको OCI कार्ड की जो फिजिकल बुकलेट साथ में रखनी पड़ती थी, अब उसकी वहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। इमिग्रेशन क्लियर करते टाइम या एयरलाइन स्टाफ को आप अपने मोबाइल फोन से ही EOCI कार्ड की वहाँ पे कॉपी दिखा सकते हैं और वहाँ पे ट्रेवल कर सकते हैं। OCI कार्ड को यहाँ पे डाउनलोड कैसे करना है ये यहाँ पे जान लीजिए। OCI services.gov.in सरकार की ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर आपको आना है। टॉप पे आपको यूजर लॉगिन का वहाँ पे ऑप्शन दिखेगा, अपनी ईमेल आईडी पासवर्ड डालकर इसमें आप लॉगिन कर सकते हैं। डैशबोर्ड पे आपको EOCI कार्ड का एक नया टैब वहां पे दिखेगा, जैसे आप उस पर क्लिक करोगे वहां पे आएगा डाउनलोड EOCI कार्ड, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपने मोबाइल फोन में सेव करके रख सकते हैं। बस दो चीजों को यहाँ पे ध्यान रखना, OCI कार्ड की जो फिजिकल बुकलेट है वो अभी भी यहाँ पे वैलिड है। EOCI कार्ड यानी कि आपको एक डिजिटल कन्वीनियंस वहां पे दी गई है। और दूसरी चीज, EOCI कार्ड सिर्फ उनका ही वहां पे डाउनलोड होगा जिनके पास ऑलरेडी वहां पे फिजिकल बुकलेट है OCI कार्ड वाली। शेयर कर देना ये वीडियो अपने सारे दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ।
0: हाँ जी, दिस इज अमेजिंग। अगर आप सुन रहे होंगे और आप सोच रहे होंगे कि OCI, आपको पता नहीं OCI है क्या, क्यों ये बुकलेट भारत देती है ओवरसीज सिटीजंस जो OCI बोलते हैं ना, तो ये है क्या, तो ये एक्चुअली अगर आप भारत से हैं मगर विदेश में रहते हो, या फिर और आपके पास विदेश की पासपोर्ट हो गई है, या फिर आपके एंसेस्टर्स, आप ऐसे देश से हो जहां आपके एंसेस्टर्स को भारत से लाकर अलग अलग देशों में गिरमिट के तौर पर या किसी और तरह से आपको किसी और देश में जो ब्रिटिश सरकार लाकर बसाए थे, तो उन लोगों को एक्चुअली OCI ये जो है ये कार्ड आप अप्लाई कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या है, आप सोच ही रहे होंगे कि ऐसा क्या है। सो एक्चुअली यहाँ पे ये होता है कि अगर आप वहाँ के रेसिडेंट्स भारत के नहीं हो, तो ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, इंडिया सरकार आपको अपने देश में रहने के लिए ये कार्ड देते हैं, तो वहां पर आप जिंदगी भर जाकर रह सकते हो, कामकाज कर सकते हो, मगर सर्टेन चीजें हैं जो आप नहीं कर सकते हो, जैसे आप वोटिंग नहीं कर सकते हो, आप सरकार की जॉब नहीं कर सकते हो, और फिर आप एग्रीकल्चरल लैंड नहीं खरीद सकते हो। मान लीजिए अगर आप फिजी से हैं और आपके एंसेस्टर्स ऑब्वियस अगर आप गिरमिट में आए थे फिजी, और अगर आप सभी एविडेंस शो करते हो, तो आप OCI के लिए अप्लाई कर सकते हो। भारत सरकार आपको ये मौका दे रही है। तो अगर किसी को नहीं पता है इसके बारे में, तो आप और रिसर्च कर सकते हो, मगर याद रखिए ये बहुत ही स्ट्रिक्ट प्रोसीजर है इनका, और आपको सभी कुछ सही सही ढंग से उन्हें प्रोवाइड करनी है। ठीक है, तो चलो एक और गीत सुनते हैं।

जी, आप सुन रहे हैं एक शाम, एक रंगीन शाम आपके नाम। और अब हम चलते हैं यहाँ से, कार्यक्रम के मोड़ को बदलते हैं और आपको लेकर चलते हैं पुराने गीतों की दुनिया में, यानी कि पुराने फिल्मी गीत, आप कह सकते हैं सदाबहार नगमे और सदाबहार गाने, मगर और कुछ ऐसे नगमे जो रूह को सुकून देने वाले नगमे होते हैं। मगर उससे पहले मैं आपको लेकर चलूंगी, एक्चुअली नाउ मैं आपको लेकर चलूंगी एक ऐसे गीत की ओर, और जो आप सोच रहे होंगे कि कौन से नगमे आपके लिए लेकर आ रही हूँ, मगर सुनिए, ये नगमा आप पसंद करेंगे।

जी आप सुन रहे हैं एक रंगीन शाम आपके नाम, और यही आपके नाम का ये जो प्रोग्राम है हर रविवार को आती है 5 से 7 बजे तक। और चलते हैं, हमने सोचा कि आपको एक जो गजल मैं हर हफ्ते सुनाती हूँ, ये गजल आप सुनिए, बहुत ही प्यारा सा गजल है जगजीत जी की आवाज में। चिट्ठी न कोई संदेश, दिल छू देने वाली ये गजल। जगजीत जी बहुत ही सक्सेसफुल हुए अपने करियर में, मगर उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया भी है।

हाँ जी, वेरी सैड गजल। देखिए, जिंदगी की यादें बुरी होती है, जिंदगी में वक्त भी बुरा आता है, मगर हमें बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि सही माने में यही जो समय होता है, यही जो बुरा वक्त होता है, ये हमें जीना सिखाता है, और हमें जीना है। ठीक है, सभी को जीना है। तो अगर आपकी जिंदगी में भी बुरा वक्त आए तो आप चिंता ना कीजिए, आगे बढ़ते ही रहिए। सो एनीवे, चलो चलते हैं पुराने गीतों की दुनिया में, एंड होपफुली दिस सॉन्ग प्लेस। हाँ जी, तो ये तो गीत मैं नहीं पसंद करती, मगर चलो कोई बात नहीं। चलो ये मैं कोशिश करती हूँ, ठीक है। कुछ गड़बड़ है, बट एनीवे नॉट टू वरी। जो गीत मैं अभी ला रही हूँ आपके लिए, आप ये सुनिए, आई एम श्योर यू लव दिस।

वाह, क्या मेलोडी! एंड ऑफ कोर्स लिरिक्स जो है अमेजिंग है ना। सो आई होप यू एंजॉयड इट, क्योंकि मुझे तो बहुत ही पसंद आई। और हाँ जी, कहना चाहती हूँ आपसे कि याद रखिए, राहत फतेह अली खान अपने शो लेकर आ रहे हैं ब्रिस्बेन, ठीक है? तो जरूर जाइए और इसे देखिए, क्योंकि 70% टिकट बिक चुके हैं ब्रिस्बेन के लिए, और ये होने जा रहे हैं गुरुवार 23rd of July, नॉट टू फार। हाँ, आप जाइए अपने टिकट को ले लीजिए। वैसे तो पर्थ और सिडनी भी आ रहे हैं, मगर वहां पर तो फुल हाउस ऑलरेडी, ठीक है? तो आप नहीं जाएंगे तो यू विल बी लेफ्ट बिहाइंड। और वैसे ओकलैंड में भी आ रहे हैं ऑफ कोर्स। सो राहत फतेह अली खान के शोज बहुत ही अमेजिंग होते हैं, एंड उनको तो जितनी बार सुना जाए कम ही होगा, ठीक है ना? तो एंजॉय दैट। सो आप सुन रहे हैं एक रंगीन शाम आपके नाम, रेडियो ब्रिजवानी 1701 पर। ये कार्यक्रम ठीक 7 बजे तक।

0: हाँ जी, उम्मीद कर रही हूँ कि आप साथ दे रहे हो। एंड बस हमारे पास चंद मिनट ही बचे हुए हैं, मगर लेते हैं छोटे से ब्रेक और फिर वापस आएंगे।
1: सुबह से शाम तक
2: व्हाट आई विल डांस, माय डांस शैल स्पीक फॉर मी।
1: शाम से रात्रि तक
2: सुपर्ब सुपर्ब फैबुलस आउटस्टैंडिंग।
3: नहीं ऐसे नहीं, खुल के बोलिए कैसा लगा। लगा कैसा?
1: और फिर उसके बाद आपका साथ देता रेडियो ब्रिजवानी, आपकी पहचान।
2: हिल मत चल।
3: अरे बगैर हिल चल कैसे होगा? ओके
2: सॉफ्ट।
0: हाँ जी, जस्ट चिल और फोन कीजिए एंजेला पूरन को, ताकि वो आपके बिजनेस को भी सपोर्ट कर सके एंड प्रमोट कर सके रेडियो ब्रिजवानी के माध्यम से। ठीक है, तो याद रखिए 200, क्योंकि जितना जल्द आप करेंगे उतनी ही तेजी से आपके बिजनेस आगे बढ़ेगी।
4: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
5: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
4: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
5: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
0: हाँ जी, जैसे हमने आपसे कहा कि जरूर आप एडवर्टाइज कराइए रेडियो ब्रिजवानी के माध्यम से, और अभी राहत फतेह अली खान अपने शो लेकर आ रहे हैं और वो तो हाउसफुल होकर ही रहेगा। अगर आपने टिकट नहीं लिए हैं तो मैं कहूंगी जल्द से जल्द ले लीजिए।
6: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। ब्रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे, ब्रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
0: यस, याद रखिए रेडियो ब्रिजवानी आप सुन रहे हैं एंड आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हो। तो ऐसा करने के लिए आप ऑफ कोर्स फोन कीजिए एंजेला पूरन को।
7: Sending a digital top up to loved ones in Fiji is super easy. Keval apne nearest dairy, supermarket or petrol station pahunchiye aur kharidiye 10, 20, 30 ya $50 top up. Aap website www.digicelinternational.com visit bhi kar sakte hain. Digicel top up apne family ko Fiji dene ke liye. Paisa bhejne ke liye our partner Click Express Pick is the easiest way to send money to Digicel Fiji. Keval aap को रजिस्टर होना है एट www.clickexpresspic.com पर। डिजिसेल, वी आर बेटर टुगेदर।
0: हाँ जी, आप सुन रहे हैं एक रंगीन शाम आपके नाम, और आपको हम शामिल तो करते हैं हर हफ्ते, मगर आज खास तौर से शामिल कर रहे हैं। अगर आज आपका जन्मदिन हो या फिर वेडिंग एनिवर्सरी हो, तो खास तौर से हम कार्यक्रम में आपको शामिल कर रहे हैं।
8: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
9: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
8: अच्छा, वो क्या?
9: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
8: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
9: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
0: हाँ जी, आप हमारा साथ दे रहे हैं और अब बस हमारे पास सिर्फ 7 मिनट ही बचे हैं, तो एक और नगमा सुनाते हैं आपको, फिर बाद में देखेंगे। ठीक है, तो एंजॉय कीजिए ये सॉन्ग. उप्स, क्या हो गया.

हाँ जी, चलो हमारा तो समय होने को है और हम यहाँ से रुख्सत ले रहे हैं और आपसे यही कहते हैं कि हमारा साथ आपने दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे बाद में आ जाएगी सताक्षी, सताक्षी के बाद में आएंगे निलय। सो सभी को अपना प्यार दीजिए, साथ दीजिए। एंड चलते चलते ये गीत आपके लिए छोड़े जा रही हूँ और यही कहना चाहती हूँ कि आप खुश रहिए और औरों को भी खुश रहने का मौका जरूर दीजिए। अगले सप्ताह एक बार फिर मुलाकात करेंगे।

तमाम खैर मकदम। एक बार फिर से अपने वीकेंड्स को और भी स्पेशल और खास मनाने के लिए आप जुड़ गए हैं रेडियो प्रिस्पानी 1701 AM पर। जी हाँ, ये वो सफर जहाँ वक्त ठहर जाता है और यादें गुनगुनाने लगती हैं। शुरू हो चुका है आपका वीकेंड वाला फेवरेट शो फरमाइशी गीत, और इस शो में कुछ सुनहरी यादों और आपकी फरमाइशों के साथ मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त सताक्षी आपके साथ। तो बस आज सिर्फ और सिर्फ आपके मेल्स एक बार फिर से मेरे साथ हैं, जिनमें आपके इमोशंस, आपकी महक और वो म्यूजिक जिसे हमने नहीं आपने अपने लिए चुना है। तो चलिए शुरू करते हैं फरमाइशी गीत रेडियो प्रिस्पानी 1701 AM पर और आगे बढ़ते हैं इस अगले ट्रैक के साथ।

पहला मेल जो आज मुझे मिला है वो है आलोक श्रीवास्तव, और आलोक ने हमें लिख भेजा है कनाडा से। आप लिखते हैं, सताक्षी, मैं अपनी पत्नी साधना के लिए गाना प्ले करवाना चाहता हूँ। हमारी शादी को 40 साल हो चुके हैं, आज भी जब मैं उन्हें चाय बनाते हुए देखता हूँ तो मुझे वही कॉलेज के दिन याद आ जाते हैं जब मैंने उन्हें पहली बार एक सफेद साड़ी में देखा था। तो आज के गानों में तो वो बात नहीं है, लेकिन प्लीज रफी साहब का वो सादगी से भरा गाना बजा दीजिए, चौदहवीं का चांद हो या कोई आफ्ताब हो। आए हाय, आलोक जी, आपकी और साधना जी की ये खूबसूरत मोहब्बत हमेशा यूं ही बनी रहे। और देखिए वो दिन भी क्या दिन थे, है ना, वो मोहब्बत 40 सालों की मोहब्बत यार, 40 साल बाद भी वैसी ही खूबसूरत। इसी मोहब्बत के नाम आपका फेवरेट गाना हम जरूर प्ले करेंगे, तो एंजॉय कीजिए आप साधना जी के साथ और सुनते रहिए हमारे साथ रेडियो प्रस्वानी पर फरमाइशी गीत।

सो वेलकम बैक। इस गाने के इस पार एक बार फिर से सताक्षी के साथ हैं आप, और चलिए सफर को आगे बढ़ाते हैं और रुक करते हैं हमारे इनबॉक्स की तरफ और देखते हैं कि अगला मेल हमें किसका आया है। सो ये मेल है दिल्ली से, दिल्ली इंडिया से विकास अरोड़ा का, और आप लिखते हैं, हेलो आरजे सताक्षी, हम कॉलेज के 5 दोस्त आज सालों बाद एक साथ बैठे हैं, पुरानी बातें हो रही हैं और आपकी आवाज हमारे इस रीयूनियन को और भी खास बना रही है। यार सच में दिल खुश हो जाता है कि इतनी दूर तक लोग हमें न सिर्फ सुन रहे हैं बल्कि अपने एहसासों को हमारे साथ जी रहे हैं। तो आप आगे लिखते हैं कि कोई एक ऐसा गाना बजा दीजिए सताक्षी कि हम सब वापस 20 साल पुराने दिनों में चले जाएं और वापस वही कॉलेज के दिन याद आ जाएं। विकास जी चलिए आपको 20 साल पीछे लेकर चलते हैं, 90s के दौर में, हाँ, और सुनवाते हैं एक ऐसा गाना जिसे आप कभी भूल नहीं पाए होंगे। एंजॉय कीजिए, ये सरप्राइज है आपके लिए, और सुनते रहिए रेडियो प्रस्थानी सताक्षी के साथ हैं आप।

मेल बॉक्स की तरफ मेरा कर्सर फिर से बढ़ गया है और किसका मेल अब मैं ले लूं? तो चलिए अभी लेती हूँ रेहाना परवीन का लिखा मेल। और आपने मुझे लिखा है इस्लामाबाद से। आप लिखती हैं कि सताक्षी, मैं जब भी शाम को अकेली होती हूँ तो कई बार रेडियो प्रस्वानी ट्यून इन करती हूँ और आपकी आवाज भी रजनीगंधा के जरिए कानों में पड़ती है। कई बार ये शोज जो हैं रेडियो प्रस्वानी के, ये मेरे सुनेपन के साथी बन जाते हैं। मुझे गजलों का बेहद शौक है, बहुत पाक मोहब्बत है मेरी गजलों से। और इस खामोश मिजाज के लिए जगजीत सिंह साहब की कोई मखमली गजल बजा दीजिए तो रूह को सुकून मिल जाएगा। रेहाना, गजल सिर्फ सुनी नहीं जाती, उसे महसूस की जाती है। आपकी तन्हाई को एक खूबसूरत सा हमसफर देते हुए जगजीत सिंह जी की आवाज में ये गजल सिर्फ आपके लिए पेश खिदमत है। आनंद लीजिए और हमारे साथ सुनते रहिए फरमाइशी गीत रेडियो प्रस्वानी 107.01 एम पर।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: फरमाइशी गीत सताक्षी के साथ आप एंजॉय कर रहे हैं रेडियो प्रस्वानी पर, और आपके लिए इस वक्त हम प्ले कर रहे हैं वो गाने जो आपकी फरमाइशों के जरिए हम तक पहुंचे हैं। अगली फरमाइश की ओर बढ़ने से पहले एक अगला ट्रैक सुनिए और यूं ही सुनते रहिए मेरे साथ फरमाइशी गीत।

अगला मेल मुझे मिला है सुजाता का, और आपने एक बार फिर से हमें इंडिया से ये मेल किया है, और आप कह रही हैं कि सताक्षी इस वक्त इंडिया में बहुत बारिश हो रही है और बाहर अभी भी हल्की हल्की बूंदें गिर रही हैं। ऐसे में खिड़की के पास बैठकर पुरानी फिल्में देखना, पुराने गाने सुनना मेरा फेवरेट काम है। मेरी फरमाइश है कि कोई एक ऐसा भीगा हुआ शरारती से गाना बजा दीजिए जिसके साथ इस मौसम का मजा दुगना हो जाए, और बल्कि मैं तो ये कहती हूँ कि प्लीज प्ले कर दीजिए ना इस वक्त कोई साजिश है बूंदों की। हाँ तो सुजाता लीजिए भाई, फिल्म फना से है ये गाना, और आमिर खान और काजोल शरारत तो नहीं कर रहे लेकिन रोमांस भरपूर कर रहे हैं इस गाने में। आइए फिलहाल ये तो पक्की बात है कि ये गाना आपके मूड को अपलिफ्ट करेगा और इस मौसम को, बरसाती मौसम को, और भी रोमांटिक कर देगा। एंजॉय कीजिए मेरे साथ इस ट्रैक को और सुनते रहिए फरमाइशी गीत 3 2 प्रस्वानी 1701 एम पर।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: फरमाशी गीत आप सताक्षी के साथ सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी पर, और आपके लिए प्ले कर रहे हैं कुछ बहुत ही खूबसूरत और प्यारे ट्रैक्स इस वक्त हम. जी हाँ, कुछ ऐसे गाने जिनकी जुगलबंदियों ने इस वक्त हमें दीवाना बना दिया है इन गानों का. एक और ट्रैक मेरे साथ सुनिए और यूं ही सुनते रहिए फरमाइशी गीत रेडियो ब्रिस्वानी पर.

नमस्कार, आदाब। ढलती हुई शाम कुछ ख्याल ले आती है और बस उन्हीं ख्यालात के साथ रात गुजरती है। सामीन, जब भी आपका ख्याल आता है, मेरा दिल यही कहता है कि वो इत्र की शीशी बेवजह इतराती है खुद पर, वो इत्र की शीशी बेवजह इतराती है खुद पर। हम तो तुम्हारे ख्यालों से ही महक जाते हैं। आपसे मुलाकात का समय तय है और हाजिर है गजलों का कारवां लेकर आपका रेडियो हम सफर। निलय प्रोग्राम है कारवां गजल और आपने ट्यून इन किया है रेडियो ब्रिस्वानी। साज तैयार हैं, सुर सजे हुए हैं, तो आगाज करते हैं महफिल का। अदा देखो नकाबे चश्म वो कैसे उठाते हैं, अदा देखो नकाबे चश्म वो कैसे उठाते हैं, अभी तो पी नहीं फिर भी कदम क्यों डगमगाते हैं। जरा अंदाज तो देखो, न है तलवार हाथों में, हमारा दिल ज़बह कर खून से मेहंदी रचाते हैं। हमें मंजूर है गर गैर से भी प्यार हो जाए, कम अज कम सीख जाएंगे कि दिल कैसे लगाते हैं। सुना है आज वो हमसे खफा हैं, बेरुखी भी है, नजर से नजर हर बार क्यों हमसे मिलाते हैं।

कुछ यूं लगता है तेरे साथ ही गुजारा वो भी, हमने जो वक्त तेरे साथ गुजारा ही नहीं। जब ये अशआर पढ़ते हैं तो इन्हीं के साथ गालिब का अंदाज भी याद आ जाता है कि तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। कहने को बात एक सी होती है, अंदाज बदल जाते हैं। मुझे लगता है जिंदगी हर किसी को दिल की मोहब्बत से नवाजती है, आपको भी नवाजा होगा। मोहब्बत ख्यालों को खूबसूरत बनाती है, आपको है कि नहीं? वो नजर देती है जिससे वादियां खूबसूरत लगने लगती हैं। हर वो बात जो दिलबर से जुड़ी हो वो दिलकश लगने लगती है। निलय के साथ हैं आप कारवाएं गजल की शमाए रोशनी से, दिल आबाद रखिएगा और सुनते रहेगा कारवाएं गजल। अजब हाल अपना होता जो विसाले यार होता, कभी जान सदके होती कभी दिल निसार होता। न मजा है दुश्मनी में न लुत्फ दोस्ती में, कोई गैर गैर होता कोई यार यार होता। ये मजा था दिल लगी का कि बराबर आग लगती, ये मजा था दिल लगी का कि बराबर आग लगती। न तुम्हें करार होता न हमें करार होता, तेरे वादे पे सितमगर अभी और सब्र करते, अगर अपनी जिंदगी का हमें एतबार होता।

नमस्कार आदाब, एक बार फिर से सलाम पेश करता हूँ आपकी खिदमत में। मैं हूँ आपका रेडियो हम सफर, निलय है मेरा नाम। दिल की बात को जाहिर करना चाहिए कि नहीं, इस बात को लेकर लोगों में बड़ी कश्मकश होती है। दिल की बात कही नहीं जाती एक अजीब से डर की वजह से कि कहीं दिल की मोहब्बत को कोई ठुकरा ना दे, ना कह दे। पर हुजूर, इतना आसान नहीं होता अपनी मोहब्बत को किसी और के साथ देखना, है ना। दूर भले वो हो जाए लेकिन दिल से उसे निकाल पाना आई थिंक नामुमकिन ही होता है। इसी ख्याल के साथ निदा फाजली साहब की बात एकदम सही लगती है कि तुमसे छूटकर भी तुम्हें भूलना आसान न था, तुमसे छूटकर भी तुम्हें भूलना आसान न था, तुमको ही याद किया तुमको भुलाने के लिए। अपना सोचा हुआ नहीं होता, वरना होने को क्या नहीं होता। उसकी आदत फकीर जैसी है, कुछ भी कह लो खफा नहीं होता। न मसलते यूं संग दिल इसको, दिल अगर फूल सा नहीं होता। याद आते न शबनमी लम्हे, जख्म कोई हरा नहीं होता। ख्वाब में होती है फकत मंजिल, पर कोई रास्ता नहीं होता। इश्क बस एक बार होता है, फिर कभी हौसला नहीं होता। हद से गुजरे हजार बार भले, हद से गुजरे हजार बार भले, दर्द फिर भी दवा नहीं होता। आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी पर गजलों का कारवां, कारवां गजल। इस कारवां को आगे बढ़ाते इन नगमों और गजलों के साथ।

अजब दिन थे कि इन आंखों में कोई ख्वाब रहता था, कभी हासिल हमें खसखाना और बर्फाब रहता था। उभरना डूबना अब कश्तियों का हम कहां देखें, वो दरिया क्या हुआ जिसमें सदा गिरदाब रहता था। वो सूरज सो गया है बर्फजारों में कहीं जाकर, धड़कता रात दिन जिससे दिले बेताब रहता था। निलय के साथ हैं, आप सुन रहे हैं कारवाई गजल। फासला रख के भी क्या हासिल हुआ, आज भी उसी का कहलाता हूं मैं। जब कोई किसी से दिल से मोहब्बत करता है ना, तो जैसे दो रूह एक हो जाती हैं। रस्म उल्फत निभाना इतना भी आसान नहीं होता, जमाने की बनाई दीवारों को तोड़ पाना इतना आसान नहीं होता। जनाब मोहब्बत का एक और नाम है दीवानगी, जो इस कदर सर चढ़कर बोलती है कि उन्हीं लम्हों को ताजा किया करता है दिल जो साथ गुजारे थे। आज भी वही पहचान सही लगती है जो उसके नाम के साथ जुड़ी हो। हमारी पहचान है मोहब्बत, जो दिल से दिल को जोड़कर रखती है। जिसे पढ़ते तो याद आता था तेरा फूल सा चेहरा, जिसे पढ़ते तो याद आता था तेरा फूल सा चेहरा, हमारी सब किताबों में एक ऐसा बाब रहता था। सुहाने मौसमों में उसकी तुगयानी कयामत थी, सुहाने मौसमों में उसकी तुगयानी कयामत थी, जो दरिया गर्मियों की धूप में पायाब रहता था। मुफलिसी में ख्याल अब हमसे कोई वादा वफा नहीं होता।

मोहब्बत और दोस्ती कहीं ना कहीं एक ही राह की ओर चलने वाले दो मुसाफिरों की तरह होते हैं। वो मुसाफिर जो साथ होते हुए भी कई बार नजरें चुरा लेते हैं। दोस्त अगर बरसों बाद मिले तो नजरें मिलाकर दिल का हाल बयां कर देते हैं, वहीं मोहब्बत अगर बरसों बाद मिले तो नजरें चुरा कर उसके खो जाने का एहसास करा देती है। इसीलिए हुजूर निले आपसे कह रहा है कि दोस्त हो या मोहब्बत, दिल में संभाल कर रखिए, नजरें चुरा कर नहीं नजरें मिलाकर मिलिएगा। तभी तो किसी ने क्या खूब कहा है कि जरूरी तो नहीं कि शायरी वो ही करे जो इश्क में हो, जिंदगी भी कुछ जख्म बेमिसाल दिया करती है। सुधरे कारवाई गजल रेडियो हम सफर निलय के साथ, दिल पर हाथ रखिए और अपनी मुस्कान को बरकरार रखिए। पेश खिदमत है अगली गजल आपके लिए। अजब एक शोर सा बरपा है कहीं, कोई खामोश हो गया है कहीं, है कुछ ऐसा कि जैसे ये सब कुछ अब से पहले भी हो चुका है कहीं, जो यहां से कहीं न जाता था वो यहां से चला गया है कहीं, तुझको क्या हो गया कि चीजों को कहीं रखता है ढूंढता है कहीं।

यह हकीकत है कि वक्त सब कुछ बदल देता है। एक उम्मीद रहती है कि अनजाने में ही वक्त कई बार सब कुछ बेहतर कर देगा। वक्त जाते हुए किसी को दिखता नहीं। बीता वक्त कितनी सारी यादें समेटे हुए होता है, जिंदगी के लम्हे समाये हुए होता है, और हम इसी उम्मीद में वक्त गुजारते हैं कि वक्त के सहारे हम इस दर्द को सह ही जाएंगे। हवाएं बहती हैं और ऐसा लगता है जैसे तुमने मुझे छुआ है, और फिर वो छुपाया हुआ दर्द आंखों की नमी में कब बदल जाता है पता ही नहीं चलता। सामने का नजारा कब धुंधला हो जाता है पता ही नहीं चलता। ये तीर दिल में मगर बेसबब नहीं उतरा, कोई तो हर्फ लबे चरागार से निकला था। मैं रात टूट के रोया तो चैन से सोया, कि दिल का दर्द मेरे चश्म तर से निकला था। वो कैसे अब जिसे मजनू पुकारते हैं फराज, वो कैसे अब जिसे मजनू पुकारते हैं फराज, मेरी तरह कोई दीवाना घर से निकला था। आप सुन रहे हैं कारवाई गजल अपने रेडियो हम सफर निले के साथ। रेडियो बिस्वानी पर सुनते रहिए।

0: सीने। यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्सऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्सऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्सऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्सऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
3: तो ओम्सऑर्ग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
2: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
3: अरे, ओम्सऑर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
2: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
3: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
2: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
3: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470631801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओम्सऑर्ग, केयरिंग विद डिग्निटी।
4: कारवाई।

वेलकम बैक ख्वातीनों हजरात, एक ख्याल आपसे बांटना चाहूंगा कि दुनिया की इस भीड़ में अपनी पहचान बहुत जरूरी है भाई। छोटी ही हो अपनी पहचान, लेकिन वो होती अपनी ही है। किसी के साए में उम्र गुजार देना आसान जरूर होता है, हर शख्स को कोशिश करना चाहिए कि दुनिया की भीड़ में उसका भी अपना एक नाम हो। कुछ लोगों के ही सही, पर दिलों पर उसका भी नाम हो। और जब कोशिशों के बाद अपनी पहचान बन जाती है, तब वो खुशी, वो एहसास, वो जज्बा, वो सब कुछ मिल जाता है जिसे बयां कर पाना भी मुश्किल होता है। पर जनाब संभल कर, क्योंकि हम कई बार नाम को बड़ा करने के लिए जब सहारे की तलाश करते हैं ना, तब इस बात पर गौर जरूर फरमाइएगा, क्योंकि बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना, जहां दरिया से समंदर मिले दरिया नहीं रहता। सुनते रहिए रेडियो बिस्वानी पर कारवाई गजल निले के साथ। आपके इस शहर में गुजारा नहीं, अजनबी को कहीं पर सहारा नहीं, बह गया मैं अगर तो बुरा क्या हुआ, खींच लेती किसे तेज धारा नहीं, आरजू में जन्म भर खड़ा मैं रहा, आपने ही कभी तो पुकारा नहीं, हाथ मैंने बढ़ाया किया बारहा, हाथ मैंने बढ़ाया किया बारहा, आपको साथ मेरा गवारा नहीं।

0: वल्ला जवाब तुम्हारा।
1: दोस्तों, हम सभी की जिंदगी में कुछ लोग ऐसे ही होते हैं कि आप जो भी काम कर लीजिए उनको आप खुश नहीं कर सकते। नुक्स नुक्स निकालते हैं वो, और नुक्स निकालना उनकी आदत में शुमार होता है। ऐसे लोगों को इग्नोर करना ही बेहतर होता है भाई। इसी तरह से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको आप जान से भी अजीज समझते हैं, पर वक्त बदलते ही वो भी ऐसे बदल जाते हैं मानो कभी हाथ में हाथ था ही नहीं। ऐसे मिलते हैं जैसे कभी हम सफर थे ही नहीं, कभी हम भी इस कदर करीब थे, दिलो जान से बढ़कर अजीज थे, मगर आज ऐसे मिला है वो कभी पहले जैसे मिला ना हो। सारी उम्मीदें, वादे, वफा जैसे सिर्फ नाम के थे। कभी तो चौंक के देखे वो हमारी तरफ, किसी की आंख में हमें भी इंतजार तो दिखे। तभी एक और दिल ये भी कहता है कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। अजीब बात है, खुद से नजर चुराता है मगर वो दूसरों को आईना दिखाता है। जो कल तलक मेरी उंगली पकड़ के चलता था वो शख्स आज मुझे रास्ता दिखाता है। उसे खबर है कि बन जाएगी मेरी जां पर, मगर वो फिर भी मेरा जर्फ आजमाता है। बहुत गुरूर न कर अपनी खुशनसीबी पर, बहुत गुरूर न कर अपनी खुशनसीबी पर, नसीब आज हंसाता है कल रुलाता है।

जरा सी बात का मलाल करते हो, शिकायतें भी वही हैं जहां मोहब्बत है। कितनी सही बात है ना ये। बाकी जहां मोहब्बत होती है वहीं उम्मीद भी होती है, और इसीलिए शिकायतें भी होंगी ही। लेकिन हुजूर, ज्यादा उम्मीदी भी बड़ी गलत है, क्योंकि इससे रिश्ते बनते नहीं बल्कि बिगड़ते हैं। जितनी आप एक्सपेक्टेशंस रखेंगे उतने ही नुकसान में रहेंगे। कई बार बात को रखने के लिए यूं ही हाँ कह देते हैं, सिर्फ इसलिए कि सामने वाले को बुरा ना लगे। लेकिन सोचिए, क्या यह सही है? बनावटी रिश्तों को बनाए रखना ना उम्मीदी को बुलावा देने जैसा है। वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूं आवाज में असर के लिए। आपका और मेरा रिश्ता ना झूठे वादे पर टिका है और ना किसी उम्मीद पर। आपका और मेरा दिल से दिल का नाता यूं ही नहीं बना है। इसी एतमाद यकीन के साथ अगली गजल आपके लिए पेश कर रहा हूं, सुनिए। अदाए हैरते आईना गर भी रखते हैं, हमें न छेड़ के अब तक नजर भी रखते हैं। न गिर्दो पेश से इस दर्जा बेनियाज गुजर, जो बेखबर से हैं सबकी खबर भी रखते हैं। कफस को खोल मगर इतना सोच ले सयाद, बहुत असीर तेरे बालों पर भी रखते हैं। फरिश्ता है तो तकद्दस तुझे मुबारक हो, हम आदमी हैं तो ऐबो हुनर भी रखते हैं।

वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं कारवाई गजल निलय के साथ रेडियो ब्रिस्वानी पर। आपने कभी सोचा है कि जब भी हम कुछ पढ़ते हैं उन हर्फों का जरिया बनाकर शायर कितने ही सारे ख्याल हमारे दिलो दिमाग में उतार देता है। शब्द कहिए या कई बार रंग कहिए, सब जैसे बोलते हैं हमसे, कुछ ना कुछ कहना चाहते हो। बस उनकी भाषा समझनी जरूरी है, उनके अंदाज को अपनाना जरूरी है। लेकर चले थे कारवां कुछ जज्बातों का, लेकर चले थे कारवां कुछ जज्बातों का, बस कुछ देर और ठहर कर उठ जाना है। मैं निलय हूं, थोड़ी देर और आपके साथ। आप सुन रहे रेडियो ब्रिस्वानी पर कारवां गजल, सुनते रहिए। अपनी आंखों को अकीदत से लगा के रख ली, तेरी दहलीज की मिट्टी थी उठा के रख ली, तुझको तकते ही रहे रात बहुत देर तलक, चांद की ताक में तस्वीर सजा के रख ली, दिल सी नौखेज कली तेरी मोहब्बत के लिए, सींच के जज्बों से पहलू में खिला के रख ली, इस नए साल के स्वागत के लिए पहले से हमने पोशाक उदासी की सिला के रख ली, दम उलझता था शबे तीरा का तारीखी से, इसलिए चांद की किन्नील जला के रख ली।

जब दो लोग प्यार में एक साथ रहते हैं तो आदत पड़ जाती है एक दूसरे की। वक्त आने पर ना आदत छूटती है और न प्यार। वेलकम बैक, मैं हूं नीले आपके साथ और आप सुन रहे हैं कारवाई गजल। प्यार भी तो आदत की तरह होता है, कुछ रिश्ते भी तो आदत बन जाते हैं, ऐसी आदत जिनको बदल पाना नामुमकिन सा हो जाता है। ना कोई छोड़ रहा है ना कोई खींचता है, मैं अपने आप बहे जाता हूं नदी की तरह, न डूबता हूं न रुकता हूं न सूखता हूं, उस एक शख्स को तलाशते हुए, उस आदत को संभाले हुए एक उम्र सी गुजर जाती है, रेत पर उसके पैरों की मोहरों को तकते हुए एक उम्र सी गुजर जाती है। चलिए सुनते रहिए कारवाई गजल, इस महफिल को अंजाम तक पहुंचाने का वक्त बस हो ही चला है, आप तो बस बने रहिएगा हमारे साथ। अजब मौसम है मेरे हर कदम पे फूल रखता है, मोहब्बत में मोहब्बत का फरिश्ता साथ चलता है, मैं जब सो जाऊं इन आंखों पे अपने होंठ रख देना, यकीन आ जाएगा पलकों तले भी दिल धड़कता है, हर आंसू में कोई तस्वीर अक्सर झिलमिलाती है, हर आंसू में कोई तस्वीर अक्सर झिलमिलाती है, तुम्हें आंखें बताएंगी दिलों में कौन जलता है, मोहब्बत गम की बारिश है जमीन सरसब्ज होती है, मोहब्बत गम की बारिश है जमीन सरसब्ज होती है, बहुत से फूल खिलते हैं जहां

वो कहते हैं ना कि वक्त किसी का गुलाम नहीं होता, वक्त की बात माननी पड़ती है भाई, और ये दस्तूर है कि हर मुलाकात का अंजाम जुदाई है, लेकिन इस जुदाई में भी साथ रहेगी आपकी यादों की खुशबू। जो वक्त आपने मेरे साथ गुजारा, मैंने जो आपके साथ गुजारा है, उसे याद करते करते हम अगले हफ्ते फिर मिलने आ जाएंगे। तो दीजिए मुझे इजाजत, अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें भी याद कर लिया कीजिएगा, और हाँ, अपने चेहरे की मुस्कुराहट को बरकरार रखिएगा। सुनते रहिएगा रेडियो बृजवाणी। इन्हीं बातों के साथ गजलों का एक कारवां अपनी मंजिल तक आ पहुंचा, तो आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द अगले संडे। तब तक के लिए खुदा हाफिज। जाते जाते कुछ कह देता हूँ आपके लिए, अपनी जुल्फों को सितारों के हवाले कर दो, शहरे गुल बादा गुसारों के हवाले कर दो, तलखिए होश हो या मस्तीए इदरा के जुनू, तलखिए होश हो या मस्तीए इदरा के जुनू, आज हर चीज बहारों के हवाले कर दो, मुझको यारो न करो रहनुमाओं के सुपुर्द, मुझको तुम रह गुजारों के हवाले कर दो, जागने वाले का तूफान से कर दो रिश्ता, जागने वालों का तूफान से कर दो रिश्ता, सोने वालों को किनारों के हवाले कर दो। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज, नमस्कार, टेक केयर।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.

फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी, सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाली शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: क्या बात है जुबिन, बैक टू बैक सुपर हिट्स, पर लड़की किसी में नहीं मिलती है। ये हाल सिर्फ वीडियो में ही है या रियल लाइफ में भी?
1: ये दिल ऐसी गलती नहीं करता।

पर सोकर झूठे को आराम न आए, लेकिन सच्चे को पल भर में कांटों पर भी नींद आ जाए। ऐ दोस्त, ऐ दोस्त, ऐ दोस्त।

0: ऐ मेरी हमरंग मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तो भी ना आती।

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनियर, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: दिस इज अमिताभ बच्चन
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
2: हाय गाइस, आई एम मनमीत वन ऑफ द मीत ब्रदर्स एंड आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: हाय, दिस इज सलमान खान और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: हाय, दिस इज दीपिका पादुकोण और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज आलिया।
6: हाय, मैं हूं तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी से।
7: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज शाहरुख खान।
8: हाय, दिस इज अजय देवगन और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।

मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए, ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए, इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 04006644355 पर। याद रहे।

0: 0400-644-35 पर या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
1: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

दुनिया के किसी भी कोने में रहा, तुमसे कितना भी फासला रहा, यकीन मानो बचपन से आज तक हर पल हर मोड़ तुम्हें साथ पाया। समझ नहीं आता इस रिश्ते को क्या कहूं यार, तुम कहो तो आज इसे एक नाम दूंगा।

फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com, द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी, सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: LKR Events proudly presents Once Upon a Time World Tour 2026. This July, experience the magic live. Ustad Rahat Fateh Ali Khan with his son Shahzaman Ali Khan live in concert, performing his greatest Bollywood and Qawwali hits. 23rd July 2026 at Brisbane Central Main Auditorium. Book your tickets now at drytickets.com.au. Presented by LKR Events, bringing unforgettable experiences to Brisbane.

0: For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venus.
1: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाली शॉप से ले सकते हैं ना?
2: Yes baby, but no compromise with quality and health. हम जाएंगे सिर्फ MC's Indian and Island Food.
1: ऐसा क्या खास है वहाँ?
2: सब कुछ, quality spices, lentils, rice, flour और frozen sabzi from Fiji and India. Brisbane के best Indian butcher supplying farm fresh goat, lamb, chicken and duck और fresh local produce भी रखते हैं. साथ ही kitchenware and disposable plates की large range किसी भी function के लिए.
1: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो.
2: MC's Indian and Island Food, serving Brisbane since 1999. Open 7 days. Find us on Facebook or visit website mcsfoods.com.au. 1 by 268 Kingston Road, Slacks Creek, phone number 3804-3818. That's 3804-3818.
3: आया क्या?
4: आएगा.

0: फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ। ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।
1: ਕਹਿ ਦੂੰ ਤੁਮੇ
2: ਹਾਂ
1: ਯਾ ਚੁੱਪ ਰਹੂੰ
2: ਨਾ
1: ਦਿਲ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਕਿਆ ਹੈ
2: ਕਿਆ ਹੈ।

0: क्या बात है जुबिन, बैक टू बैक सुपर हिट्स। पर लड़की किसी में नहीं मिलती है, ये हाल सिर्फ वीडियो में ही है या रियल लाइफ में भी?
1: ये दिल ऐसी गलती नहीं करता।

जीवन बहुत खूबसूरत है। ये किसी धर्म, सीमा, जाति, उम्र या फिर देश में नहीं बटा है। जीवन तो जीवन है, जिसे जीने के लिए हम सब इस दुनिया में आए हैं। और हम सब यही चाहते हैं कि बहुत शांति के साथ, प्यार के साथ, अपनेपन के साथ हम जीवन जिए। हमें से कोई भी ये तो नहीं चाहता ना कि हमारी जिंदगी में लड़ाइयाँ हों, झगड़े हों, उत्पात हो या फिर आर्ग्यूमेंट्स हों। नहीं ना, हम सब खुशी खुशी रहना ही तो चाहते हैं। तो फिर हमारी जिंदगी में ये आर्ग्यूमेंट्स, ये लड़ाइयाँ, ये सब आता कहाँ से है? आइए आज मिलकर इसी पर विचार करते हैं। नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ सताक्षी आपके साथ आज एक बार फिर से हमारे सफर जीवन आधार में जुड़ेंगे हमारी बातों के साथ। लेकिन इसे एक और गाने के साथ बढ़ते हैं आगे। सुनते रहिए रेडियो ब्रिजवाणी।

1701 पर आप सुन रहे हैं जीवन आधार। जीवन के आधार को आज एक बार फिर से हम साथ समझने की और जानने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे देखा जाए तो हम सबके जीवन में सारा खेल विचारों का है। आपके थॉट्स जो हैं वो या तो आपको बना देते हैं या आपको बिगाड़ देते हैं। भगवान बुद्ध ने भी स्वयं यही तो कहा है कि जीवन में सारा खेल विचारों का है। आप चाहें तो अपने विचारों से अपनी किस्मत तक को बदल सकते हैं, आपकी जिंदगी में जो हो रहा है उन्हें बदल सकते हैं, आप अपने रिश्ते सुधार सकते हैं, आप अपनी जिंदगी में पॉजिटिविटी लेकर आ सकते हैं। और यही विचार आप कोई अच्छे खासे करियर को खराब करके आपको मिटाने का भी काम करते हैं। तो खुद पर भरोसा रखिए और हमेशा अपने थॉट प्रोसेस को स्ट्रांग रखिए। इसी बात पर आगे बढ़ते हैं जीवन आधार में एक और गीत के साथ। सुनते रहिए रेडियो प्रसवानी।

रेडियो पिसवानी पर जिंदगी के नाजो नखरों से दूर खुद को, खुद की सच्चाई को और इस सृष्टि को जानने का सफर है जीवन आधार। इसी सफर में आज एक बार फिर से आप हैं सताक्षी के साथ। आइए जीवन आधार में आगे बढ़ते हुए सुनते हैं अभी अगला गीत। सुनते रहिए रेडियो पिसवानी।

अक्सर हम अपने आप को दूसरों की दृष्टि से देखते हैं, दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, हम यही सोचते हैं ना। लेकिन आप दूसरों की दृष्टि में क्या हैं, वो आपको कैसे देखते हैं, आपको क्या समझते हैं, ये इम्पोर्टेंस रखता ही नहीं है, ये जीवन में महत्वपूर्ण है ही नहीं। जीवन में महत्वपूर्ण तो ये बात है कि आप अपनी दृष्टि में क्या हैं, आप खुद को कितना मानते हैं, आप खुद से कितना प्यार करते हैं, आप खुद को कितना अच्छे से जानते हैं और आप खुद की काबिलियत पर कितना भरोसा करते हैं, ये ज्यादा जरूरी है, ये जानना ज्यादा जरूरी है। तो खुद को पहचानिए, दूसरों से अपनी पहचान की उम्मीद रखना बंद कीजिए। और आइए इसी बात पर आगे बढ़ते हैं एक और गीत के साथ। सुनते रहिए रेडियो प्रस्वानी पर जीवन आधार।

को जानने का और उस परम शक्ति से मिलने का जो इस सृष्टि का पालनहार है। ये सफर है जिसका नाम है जीवन आधार। जीवन आधार पर आज हम एक बार फिर से जिंदगी को, जीवन को इस सुबह समझने की कोशिश कर रहे हैं और इसी सफर के साथ आगे बढ़ते हुए एक और गीत यहाँ पर सुनेंगे। सुनते रहिए सताक्षी के साथ जीवन आधार।

कहते हैं कि आप जो विचार रखते हैं ना दोस्तों, वही आपके शब्द बनते हैं, क्योंकि जो हम सोचते हैं वही हम बोलते हैं, और जो हम बोलते हैं ना वही हम करते हैं, और जो हम करते हैं वही तो हम बन जाते हैं। बात नहीं समझे? कहने का मतलब ये है कि अपने थॉट प्रोसेस पर हमेशा ध्यान दीजिए, क्योंकि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप करते हैं। अपने सोचे हुए को ही तो अपन अंजाम देते हैं। अब देखिए ना, एक इंसान पूजा के पहले भी सोचता है और मर्डर करने के पहले भी सोचता है। कहने का मतलब है कि जो आप सोचते हैं वही तो आप बोलते हैं, और जो आप बोलते हैं, जो आप सोचते हैं फिर बोलते हैं, वही आपके एक्शंस होते हैं, वही काम आप करते हैं, यानी कि वही आपके कर्म बन जाते हैं, और जो कर्म आप करते हैं वो कर्म ही आपको बनाते हैं। इसलिए सबसे पहली शुरुआत अपनी सोच से कीजिए, अपनी सोच को अच्छा रखिए, जीवन अच्छा होता जाएगा। आइए एक और गाने के साथ बढ़ते हैं इसी जीवन के सफर में आगे, जीवन आधार में।

श्रोताओं, जीवन आधार आप सुन रहे हैं सताक्षी के साथ रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM पर। ये सफर जो है ये अपनों के साथ के साथ साथ उनका साथ निभाने का भी है जो हमारी जिंदगी में कोई नहीं है, जिन्हें हम जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, लेकिन हम उनके भी हित को, उनके भी खुशियों को ध्यान में रखें और कर्म करें, यानी हम इंसान बने, इसी बात को ध्यान में रखने का सफर है जीवन आधार। आइए इसी सफर में आगे बढ़ते हैं एक और गीत के साथ।

मन, कहते हैं मन बड़ा ही चंचल होता है दोस्तों, लेकिन ये मन बहुत जल्दी अपनी शांति भी छोड़ देता है। यानी किसी के बिहेवियर पर कई बार हमारा मन डिपेंड हो जाता है। लोगों का बिहेवियर अगर अच्छा रहा तो हमारा मन भी ठीक रहता है, अच्छा रहता है, खुश रहता है। लेकिन अगर लोगों का बिहेवियर हमारे लिए चेंज हुआ तो हमारा मन भी चेंज हो जाता है, विचलित हो जाता है, दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है। अपने मन को इतना मजबूत बनाइए कि किसी के व्यवहार का असर आपके मन की शांति पर ना पड़े, वो जितना शांत है उतना ही रहे, विचलित ना हो। आइए आगे बढ़ते हैं इसी बात पर एक और गीत के साथ। सुनते रहिए जीवन आधार, आपके साथ है सताक्षी।

श्रोताओं, ये था एक और जीवन आधार का सफर रेडियो प्रिस्वानी 1701 AM पर। जीवन आधार की एक और कड़ी के साथ कल सुबह होगी आपसे फिर से रेडियो प्रिस्वानी पर मुलाकात। आज के सफर से आप सताक्षी इजाजत चाहेगी। नमस्कार।

नमस्कार ब्रिस्बेन, नमस्ते अदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट आरजे जाने जैन। आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी में प्रोग्राम जाने का सफर, और सुबह की एक फ्रेश शुरुआत के साथ साथ आप सभी का दिल से स्वागत है और उम्मीद है आपका वीकेंड बहुत ही अच्छा रहा होगा दोस्तों। तो चलिए इस मंडे को पॉजिटिव एनर्जी के साथ शुरू करते हैं, और शुरुआत हम हमेशा एक प्यारे से विचार के साथ करते हैं। हर नया दिन एक नई अपॉर्चुनिटी लेकर आता है। कल गलतियों को छोड़िए और आज अपने सपनों की तरफ एक नया कदम जरूर बढ़ाइए। तो आइए इसी कदम के साथ हम भी बढ़ाते हैं अपने कदम इस गीत की, और आप बस जुड़े रहिए मेरे साथ ओनली ऑन रेडियो ब्रिस्बेन।

वेलकम बैक टू रेडियो ब्रिस्बानी में। तो इसी के साथ आइए बढ़ते हैं आगे, कुछ वेदर अपडेट जान लेते हैं ब्रिस्बेन की। तो ब्रिस्बेन में आज जो है सुबह ठंडी और सुहानी शुरुआत रहेगी। दिन के दौरान जो है मौसम हल्का सा धूप वाला रहने की संभावना है, इसीलिए जी अगर आप ऑफिस या स्कूल जा रहे हैं या घर पर भी है तो एक लाइट जैकेट साथ रखना ना भूलें और घर पर भी अपने आप को कवर करके जरूर रखें। वहीं पर अगर ट्रैफिक की बात करें तो मॉर्निंग पीक आवर्स जो है उसमें रोड्स पर भीड़ बढ़ सकती है। घर से थोड़ा जल्दी जरूर निकलिए, सीट बेल्ट जरूर लगाइए और ड्राइव सेफली कीजिए, क्योंकि आज है मंडे, ऑफिस का टाइम है, वीकेंड खत्म हो चुका है, तो भीड़ ट्रैफिक होने की तो संभावना बढ़ती है। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट ट्रैक की ओर। सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्बेन।

हाँ जी, तो इसी के साथ अगर टॉप अपडेट से जाने तो ब्रिस्बेन ओपन हाउस इवेंट के लिए कई आइकॉनिक बिल्डिंग्स इस साल जो है विजिटर्स के लिए ओपन होंगे, जिससे कि सिटी की हेरिटेज और आर्किटेक्चर जो है उसको एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। वहीं पर अगर हम एंटरटेनमेंट की बात करें तो एंटरटेनमेंट लवर्स के लिए खुशखबरी है भाई, डिज्नी का वर्ल्ड फेमस म्यूजिकल द लायन किंग इस साल जो है नवंबर में ब्रिस्बेन के क्यूपैक यानी कि QPEC, जी हाँ यानी क्यूपैक में वापस आ रहा है और टिकट्स को लेकर काफी एक्साइटमेंट बनी हुई है। तो आइए जी इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक ओनली ऑन रेडियो ब्रिस्बेन।

हाँ जी, आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रसवानी। इसी के साथ जी आइए थोड़ा सा स्पोर्ट्स की ओर ध्यान देते हैं। NRL और क्रिकेट फैंस के लिए एक्साइटिंग वीक चल रहा है। स्पोर्ट्स वर्ल्ड में कई बड़े मैचेस जो हैं और टूर्नामेंट्स जो है उसकी चर्चा गर्म है, इसीलिए जी अपने फेवरेट टीम्स को सपोर्ट करना ना भूलिए। तो अब वक्त है कुछ आपको अच्छे अच्छे म्यूजिक सुनाने का। अपनी चाय या फिर कॉफी को एंजॉय जरूर कीजिए। हम अब सुनते हैं एक एनर्जेटिक गाना और गाने के बाद लौटेंगे और लेकर आएंगे आप सभी के बीच बॉलीवुड बज, इंटरेस्टिंग फैक्ट और भी बहुत कुछ। तो जाइएगा कहीं भी मत, रेडियो ब्रसवानी सुनते रहिए।

हाँ जी, वेलकम बैक टू रेडियो ब्रिस्वानी में आप सभी सुन रहे हैं चाइनी का सफर ऑनली ऑन रेडियो ब्रिस्वानी। तो दोस्तों, बॉलीवुड में भी ना इस हफ्ते काफी शोर मच रहा है। अब शोर किस चीज का मच रहा है? प्रोजेक्ट्स को लेकर, क्योंकि दोस्तों कई स्टार्स अपनी अपकमिंग फिल्म्स की शूटिंग कर रहे हैं और फैंस भी नए ट्रेलर्स और सॉन्ग्स जो है बेसब्री से इंतजार भी कर रहे हैं और सॉन्ग्स जो है सुन भी रहे हैं जो आ चुके हैं। इसी के साथ दोस्तों, हमेशा हेल्थ टिप तो देती ही हूँ और आई नो कि आप सभी अपनी हेल्थ की बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन मेरा काम है आप सभी को फिर से इस चीज की घंटी बजाना कि भाई अपना हेल्थ का ध्यान जरूर रखें, अपने आप को, अपने बॉडी को हाइड्रेट जरूर रखें ताकि हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो अच्छे से काम करता रहे। जी बिल्कुल। और दोस्तों, इसी के साथ भाई, मुस्कुराना तो फ्री है, इसके लिए तो कोई पैसे नहीं लगते, लेकिन जी इसका असर जो है ना बहुत कीमती होता है। जी हाँ, और ये जो असर है हमारी मुस्कान है, हम पर तो असर पड़ता ही है और हमें देख के ऐसे लोगों पर भी असर पड़ता है जो ऑलरेडी बहुत दुखी है, क्योंकि हमारे एक स्माइल से दूसरों के होंठों में भी अगर मुस्कान आ जाए तो इससे बड़ा काम कोई नहीं हो सकता, क्योंकि किसी दूसरे को हंसाना ही सबसे टफ काम है इस दुनिया में। तो दोस्तों, हंसते रहें और दूसरों को भी हंसाते रहें और आज किसी एक इंसान के चेहरे पर मुस्कान जरूर लाएं। अपने आप को समझाएं कि नहीं, अगर सामने वाला कोई दुखी है तो उसका मजाक ना उड़ा के हमेशा साथ देने की कोशिश जरूर करती रहने चाहिए। तो आइए जी, अब वक्त है एक ब्यूटीफुल सा गाना सुनने का और आपको सुनाने का। सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी।

वेलकम बैक टू रेडियो ब्रिसवानी में। तो दोस्तों, अगर मैं टेक्नोलॉजी अपडेट की बात करूं तो आपको एक इन्फॉर्मेशन जरूर दूंगी, दोबारा से शायद मैंने ये पहले भी दी है, कि जो आज के डिजिटल जमाना है, ऑनलाइन जमाना है, तो दोस्तों आप सभी देख रहे होंगे जिस तरह से टेक्नोलॉजी इजी हो गई है, उस तरह से जो ऑनलाइन स्कैम्स है वो भी काफी बढ़ चुके हैं। तो ऑनलाइन स्कैम्स जो है उसे मतलब बचकर रहने के लिए आप कभी भी किसी भी अननोन लिंक पर क्लिक ना करें, और अगर क्लिक करने से पहले ये जरूर देख ले कि उसकी ऑथेंटिसिटी जो है वो चेक जरूर करें, ओटीपी हो, बैंकिंग पासवर्ड या फिर पर्सनल डिटेल्स कभी भी किसी के साथ शेयर ना करें। आपके साथ दोबारा से ये मैं दोहरा रही हूँ क्योंकि ये स्कैम्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। कभी कभी हम लोग लिंक्स पे क्लिक कर लेते हैं, हमें ये लगता है कि पता नहीं हमारे फ्रेंड सर्कल या कहीं से भी हमें लिंक आया है तो कुछ अच्छा ही होगा, क्लिक कर लो। अगर हम जहां क्लिक कर लेते हैं तो स्कैम हो जाता है, हमारी पूरी बैंक डिटेल्स वगैरह सब जगह मतलब कहते हैं ना चली जाती है। तो इसीलिए कभी भी किसी लिंक पे या फिर कोई भी ओटीपी आपसे कुछ मांगे तो कभी भी ना दें। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं आगे, सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक ओनली ऑन रेडियो ब्रिसवानी।

इसी के साथ एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं जाने का सफर, और अपने दोस्त को आप ये जरूर बताएं, अगर आप हमारे शो के लिए सॉन्ग डेडिकेशन, बर्थडे विशेज या फिर कोई भी स्पेशल मैसेज भेजना चाहते हैं तो हमें जरूर मैसेज कीजिए। हो सकता है अगले शो में आपका नाम और मैसेज रेडियो ब्रिसवानी पर जरूर सुनाई दे। तो दोस्तों, इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट आरजे जानी जैन, और आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी। अपना और अपने परिवार का जरूर ख्याल रखिये, हमेशा मुस्कुराते रहिए, एंड ऑलवेज से सेफ ड्राइव। एंड हाँ जी, क्या जी, अपना तो ध्यान जरूर रखें, ड्राइव सेफ करोगे और अपने आप को भी सेफ रखोगे, यही मेरी शुभकामना है आप सभी के साथ। हमेशा हंसते बसते रहें, अपने हेल्थ का जरूर ध्यान रखें, और जी हर एक मोमेंट को एंजॉय जरूर कीजिए। सुनते रहिए रेडियो ब्रिसवानी।

नमस्कार, मैं सताक्षी, आप सुन रहे हैं रेडियो प्रसवानी 1701 AM। आइए सुनते हैं अब तक की प्रमुख खबरें और सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। आयरन लंग इस्तेमाल करने वाली आखिरी यूएस पोलियो मरीज मार्था लिलार्ड का निधन। आयरन लंग इस्तेमाल करने वाली आखिरी यूएस पोलियो मरीज मार्था लिलार्ड का निधन हो गया है। मार्था लिलार्ड सिर्फ 5 साल की थी जब उन्हें पोलियो का पता चला। वो जिंदा रहने के लिए आयरन लंग पर निर्भर थी। वो यूएस की आखिरी पोलियो मरीज थी जिन्होंने मशीन का इस्तेमाल किया था। उनको बताया गया था कि वो 20 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाएंगी। उनमें जीने और अपनी जिंदगी को सबसे अच्छा बनाने का जोश और इच्छा थी, जिसके चलते वो 78 साल तक जिंदा रही। ट्रंप के करीबी अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम का निधन। भारत पर 500% टैरिफ लगाने की करते थे मांग। अमेरिका के सीनियर सीनेटर और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेहद करीबी सहयोगी रहे लिंडसे ग्राहम का निधन हो गया। ये जानकारी उनके कार्यालय द्वारा सोशल मीडिया पर जारी की गई। उनके कार्यालय ने एक पोस्ट में बताया कि ट्रंप के बेहद करीबी सहयोगी रहे लिंडसे ग्राहम का अचानक निधन हो गया है। जानकारी के अनुसार सीनेटर लिंडसे ग्राहम उस बिल को पारित करवाने की तैयारी कर रहे थे जिसमें भारत पर 500% टैरिफ लगाने का प्रावधान था। ये बिल रूसी तेल खरीदने वाले देशों पर भारी भरकम टैरिफ लगाने को लेकर था। अमेरिका ने ईरान के 140 ठिकानों को बनाया निशाना। तेहरान ने यूएस कतर पर किए हमले। मिडिल ईस्ट में एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। अमेरिका ने ईरान पर हमले का दौर शुरू कर दिया है। अमेरिका ने ईरान में 140 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरान ने बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात पर भी मिसाइली हमले किए। चीन में बाढ़ से 18 लाख लोग विस्थापित। बांग्लादेश में 44 की गई जान। हर तरफ तबाही का मंजर। जापान और ताइवान में तबाही मचाने के बाद चक्रवात बावी चीन के पूर्वी शहर वेंझू की ओर तेजी से बढ़ रहा है। इसे देखते हुए 18 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। वहीं बांग्लादेश के दक्षिण पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार मानसूनी बारिश के कारण कई भीषण बाढ़ और भूस्खलन में कम से कम 44 लोगों की मौत हुई है, जबकि लाखों लोग बाढ़ में इधर उधर फंसे हुए हैं। आइए जुड़ते हैं अब भारत से और सुनते हैं भारतीय खबरें। फिर मंडराया कोविड का खतरा। आंध्र प्रदेश में 2 लोगों की मौत। 8 एक्टिव केस मिलने के बाद हड़कंप। आंध्र प्रदेश में YSR कडप्पा जिले में पिछले कुछ हफ्तों में COVID-19 के 8 मामले सामने आए हैं और 2 मरीजों की मौत हो चुकी है। नए मामले सामने आने और मरीजों की मौत के बाद स्वास्थ्य अधिकारियों ने निगरानी और तैयारियों के उपाय तेज कर दिए हैं। ईशा शर्मा मौत मामला। एम्स ने CBI को सौंपी रिपोर्ट। जिम बेल्ट से मैच खाए चोट के निशान। तीशा शर्मा मौत मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। एम्स दिल्ली की टीम ने 1 महीने की गहन जांच के बाद तैयार की गई 11 पन्नों की विस्तृत रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में सीबीआई को सौंप दी है। कोर्ट के आदेशों के तहत ये रिपोर्ट गोपनीय रखी गई है। एम्स मेडिकल बोर्ड द्वारा की गई लैब और हिस्टोपैथोलॉजिकल जांच में उस जिम बेल्ट पर स्किन टिश्यू होने की पुष्टि हुई है जिसमें उसका गला घोटा गया था। ये थी अब तक की प्रमुख खबरें। अगली खबरों के साथ जल्द होगी मुलाकात। सुनते रहिए रेडियो प्रसवानी और सताक्षी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਧੇਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਇਸੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 98,000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ ਰਹੀ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਘਰ ਜਲਦੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ $2 billion ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਅਸੀਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ 4100 hectares ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ 53,500 ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ. ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ. ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ. Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
3: Middle East tensions remain high. The United States and Iran are continuing diplomatic contacts after recent military exchanges. Shipping through the Strait of Hormuz remains a major concern because of its importance to global oil supply, and governments are watching for any impact on fuel prices. अच्छा, रग्बी में इंग्लैंड एम्फेटिक विन ओवर फिजी हैज स्पार्क्ड डिस्कशन अमंग फिजियन फैंस एंड रग्बी कमेंटेटर्स अबाउट द टीम्स डिफेंस एंड प्रिपरेशन हेडिंग इनटू द रिमाइंडर ऑफ द नेशंस चैंपियनशिप. ऑस्ट्रेलियन पॉलिटिक्स एंड डिफेंस इंडस्ट्री मिनिस्टर पैट कॉनरॉय हैज वॉर्न्ड दैट चाइनाज रीसेंट मिसाइल टेस्ट कुड कंट्रीब्यूट टू एन arms race in the Pacific as Australia continues strengthening defense partnership with Pacific neighbors. It was always Australia doing that, but now China wants to come and play a part in it. Okay, FIFA World Cup, the semifinals lineup is now set. France versus Spain on Tuesday, England versus Argentina on Wednesday. Okay, yeah.
4: Wow.
3: Football fans around the world are eagerly anticipating this blockbuster matches. Okay, that's it for a little while. I'll bring some more news later.
4: Okay. That's good. Thank you for that.
3: No problem.
4: Okay.

0: Okay, we're back.
1: Yes, with 4 minutes to go.
0: देखिए दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में पैसिफिक सिक्योरिटी को लेकर चर्चा तेज है. डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि पैसिफिक रीजन में बढ़ती मिलिट्री एक्टिविटी पर ऑस्ट्रेलिया नज़र बनाए हुए हैं और अपने रीजनल पार्टनर्स के साथ मिलकर काम कर रहे हैं. ठीक है, काम कर रहा है. विक्टोरिया के गिप्सलैंड एरिया में एक घर से एक आदमी का शव मिलने के बाद पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है. होमिसाइड डिटेक्टिव मामले की जांच कर रहे हैं. इट्स अनदर वन देन, आई ओके. फिजी में सरकार डिजास्टर प्रिपेयरनेस को मजबूत करने के लिए सूबा के पास तमबुआ विलेज में एक नया इवैक्यूएशन सेंटर बनाने जा रही है. साथ ही शुगर इंडस्ट्री के फ्यूचर को लेकर भी गंभीर, जी हाँ, चर्चा चल रही है. आई थिंक इट्स अ डाइंग इंडस्ट्री नाउ, बट एनीवे, चीनी कम ना, इसीलिए शायद. तो चलो दोस्तों, अब इसी के साथ हम निकलेंगे. और व्हाट एल्स अमिता?
1: What we got? It happens after this program with Sataksi.
0: Yeah.
1: What happens after it happens?
0: What?
1: What program comes after it happens? Sandesh ke saath, no?
0: Oh, yeah. After this, Sandesh is a Punjabi program. And then 3 o'clock... you'll be with Nivea.
1: Nivea,
0: I think Nivea will
1: in.
0: Should be back,
1: yep.
0: Because Nivea has not been very well.
1: Oh, hasn't she?
0: So hopefully, yeah. और देखिए दोस्तों, जाते जाते याद रखिए, ओके, हमेशा याद रखिए कि मुश्किलें आपको रोकने नहीं बल्कि और मजबूत बनाने आती है. ठीक है, ये बात हमेशा याद रखिए. Amy, before you go, when you used to do exam papers,
1: yep,
0: did you tackle the hard questions first or the easy ones?
1: I would read everything first, yeah, and then try and make points. And then maybe try and tackle the hardest one first.
0: No, I used to do the easy ones first. Because sometimes if you get stuck with the hard one,
1: yeah,
0: you don't make
1: true.
0: Your mark. You know
1: All
0: what
1: right.
0: I mean?
1: So we're going
0: to
1: say namaste,
0: all right, we have to go.
1: Goodbye and take care.
0: अपना ख्याल रखना दोस्तों. कल हम मिलेंगे.
1: Yes.
0: फिर मिलेंगे. Hopefully.
1: Hopefully. No, no.
0: Hopefully, I have enough bandwidth.
1: Or you better get it all. It went smoothly today, so hopefully tomorrow is the same. Okay.
0: Yeah, it should be okay, unless if something happens to bandwidth. All right. अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों. फिर मिलते हैं.
1: Have a beautiful day. Namaste.
0: Okay, namaste.

0: உழவு வெளியல் முழவு
1: गुड मॉर्निंग वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, आदाब, सत श्री अकाल। जाग जाइए क्योंकि सुबह जो है वो देखिए आपके दरवाजे पर दस्तक दे चुकी है। जी, और इसके पहले कि आपका एक लकी डे आपका दरवाजा खटखटाकर वापस चला जाए, जाग जाइए। वैसे अलार्म भी तो बज बज कर बेचारा थक चुका है, तो अब ये नया दिन आपको बुला रहा है, उठिए और एक नए दिन का वार्म वेलकम करने के लिए हो जाइए तैयार। वैसे इस नए दिन में आपका साथ निभाने के लिए मैं भी तो हूँ आपके साथ। जी हाँ, मैं सताक्षी रेडियो प्रस्वानी 1701 AM पर लेकर आ गई हूँ आपके लिए एक बढ़िया सी रिफ्रेश मॉर्निंग। और आज की मॉर्निंग भाई हम रिफ्रेश बनाएंगे कुछ बहुत ही जबरदस्त मॉर्निंग की बातों के साथ और बहुत ही जबरदस्त मॉर्निंग ट्रैक्स के साथ भी। सो चलिए बिना देर किए आगाज कीजिए अपने इस दिन का। और देखिए, लेजीनेस के साथ मत उठिएगा, अपने मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ उठिए और सबसे पहले जाकर अपना चेहरा आईने में देखिए। और वो जो मुस्कुराहट है ना, वो पूरे दिन आपको पॉजिटिव भी रखेगी और आपकी लाइफ में एक बहुत ही खूबसूरत दिन को भी ऐड करेगी। एक और ट्रैक सताक्षी के साथ एंजॉय कीजिए और इसके साथ आइए चलते हैं आपको आगे लेकर। स्टे ट्यून्ड रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM आप सुन रहे हैं। इट हैपन्स।

इट हैपेंस. एंजॉय कर रहे हैं आप सताक्षी के साथ रेडियो प्रस्वानी 1701 एम पर. और भाई आज आप बहुत लकी हैं क्योंकि बहुत सारे लोग आज आपको विश कर रहे हैं. हम सब जब इस दुनिया में आते हैं तो हमारा बर्थडे जो है वो साल में एक दिन तो आता है ना. हाँ, लेकिन बहुत लकी होते हैं वो लोग जिन्हें विश किया जाता है, क्योंकि कई लोग ऐसे भी हैं जिनका जन्मदिन तो होता है लेकिन उन्हें विश करने वाला कोई नहीं होता. तो छोटी छोटी सी चीज़ों से ना दोस्तों, अगर हम खुद को लकी मानने लगे तो हमारी जिंदगी खुशनुमा नहीं हो जाएगी. सो विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे. और भाई रेडियो प्रस्वानी भी आपके लिए ये विश करता है कि आपका दिन ना आपकी पूरी जिंदगी बहुत ही खूबसूरत हो. जिनकी आज वेडिंग एनिवर्सरी है उन सबको भी शादी की सालगिरह की ढेरों ढेर शुभकामनाएं. देखिए, दौर वो है जब रिश्ते टिक नहीं रहे हैं. आप खुद भी न्यूज में कितना पढ़ रहे होंगे, सुन रहे होंगे कि भाई शादी तो मजाक बनती जा रही है, लेकिन आपकी शादी टिकी भी है, आप वेडिंग एनिवर्सरी भी मना रहे हैं और एक दूसरे के साथ खुश भी हैं. तो बस इस खुशहाली को बनाए रखिए, क्योंकि आप भी हाँ लकी लोगों की लिस्ट में हैं जो रिश्तों पर विश्वास करते हैं. और जिनके लिए आज का दिन है स्पेशल और खास, उन सबको ऑल द वेरी बेस्ट. आपके नाम प्ले करते हैं ये अगला ट्रैक, एंजॉय कीजिए और मेरे साथ सुनते रहिए. इट हैपेंस सिर्फ और सिर्फ आपके अपने रेडियो प्रस्वानी पर.

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
3: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
3: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: टैपेंस एंजॉय कर रहे हैं आप रेडियो ब्रिस्वानी 1701 एम पर. आपके साथ सताक्षी है और मेरे साथ हैं कुछ बहुत ही खूबसूरत मॉर्निंग ट्रैक्स. वैसे आज सुबह सुबह एक बात जहन में आई तो सोचा कि आपके साथ बांट लें कि हम अक्सर सिचुएशंस को दोष देते हैं, लेकिन देखा जाए तो सिचुएशन का रोल उतना नहीं होता है जितना खेल जो है वो नजरिए का होता है. अब आप कहेंगे कि कैसे? तो भाई, एक बार एक जूता बनाने वाली कंपनी ने दुनिया के बहुत पिछड़े हुए इलाके में अपने दो मार्केट रिसर्चर्स को भेजा. पहले वाले ने वहां जाकर कंपनी को मेल किया कि यहाँ कोई जूता नहीं पहनता है, इसलिए यहाँ हमारे लिए कोई मार्केट नहीं है. लेकिन वही दूसरे रिसर्चर ने वहां से एक मेल किया कि सर, यहाँ कोई जूता नहीं पहनता, इसलिए यहाँ हमारे लिए बहुत बड़ा मार्केट है, हम सबको जूता पहनना सिखा सकते हैं. तो देखा आपने, सिचुएशन एक ही थी लेकिन नजरिए ने सब बदल दिया. तो इसीलिए कहती हूँ ना आपसे कि अपना नजरिया हमेशा बड़ा रखिए और जिस नजरिए से सब ना देख रहे हो उससे आप देखना शुरू करिए. तो जब आज ऑफिस या कॉलेज में कोई बड़ी प्रॉब्लम आए तो परेशान मत होइएगा, बस ये सोचिएगा कि आपको कुछ नया सीखने का मौका मिल रहा है. आइए एक और ट्रैक प्ले करते हैं आपके लिए, एंजॉय कीजिए और मेरे साथ सुनते रहिए इट हैपेंस रेडियो प्रिस्वानी 1701 एम पर.
1: ब्लैकमेल योर प्रेजेंट टू रुइन अ ब्यूटीफुल फ्यूचर.

0: You're different. You know, सबसे अलग. मेरी बात सुनते हो. Really listen. काश मेरी लाइफ में भी कोई ऐसा होता. Am I making sense?
1: Not at all. But that'll be 3,000 rupees, please.

वेलकम बैक, इट हैपेंस, सुन रहे हैं आप सदाक्षी के साथ आपकी अपनी रेडियो प्रेसवाणी 1701 एम पर। और दोस्तों, आज मैं आपको एक छोटा सा चैलेंज देती हूँ। यू नो, हम सबकी एक आदत बहुत खराब हो गई है। सुबह आँख खुलते ही हमारा हाथ सीधा अपने स्मार्टफोन पर चला जाता है, व्हाट्सएप नोटिफिकेशन, रील स्क्रॉल सब करना स्टार्ट कर देते हैं हम। लेकिन आज आपका चैलेंज ये है कि सुबह उठने से पहले 30 मिनट अपने फोन को आपको हाथ भी नहीं लगाना है। वो 30 मिनट सिर्फ आपके होने चाहिए। खिड़की से बाहर उड़ते परिंदों को देखिए, अपने पौधों में पानी डालिए, या सिर्फ शांति से एक जगह बैठकर अपनी चाय या कॉफी का मजा लीजिए। यू नो, कभी कभी कॉन्शियस माइंड के साथ सिर्फ आसपास के एटमॉस्फेयर को ऑब्जर्व करना ना आपको बहुत रिलैक्स कर देता है। आप खुद महसूस करेंगे कि आपका दिमाग दिन भर कितना शांत और फोकस्ड रहता है। करके देखिए, हालांकि आपके लिए बहुत मुश्किल टास्क है, मैं जानती हूँ, बट स्टिल जब आप कंप्लीट करेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। तो चलिए, आपके मूड को और रिफ्रेश करते हैं एक और बेहतरीन गाने के साथ। इंजॉय करते रहिए सताक्षी के साथ, इट हैपेंस रेडियो ब्रिस्वानी 1701 एम पर।

0: बैक टू बैक ट्रैक्स का हमारा सफर गानों की हैट्रिक इस वक्त आप एंजॉय कर रहे हैं सताक्षी के साथ। गानों की हैट्रिक का ये लास्ट ट्रैक और इसके बाद होंगी ढेर सारी बातें आपके अपने ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस में। चलिए आगे बढ़ते हैं और एंजॉय करते हैं अभी गानों की हैट्रिक का ये तीसरा ट्रैक।
1: पत्थर है वो मुझे रोक टोक

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet, one of the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
6: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
7: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane से.
8: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
9: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.
10: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है. एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है. ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है. यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है. लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है. यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं.

आप सुन रहे हैं इटहैपेंस रेडियो प्रसवानी पर और इटहैपेंस में आपके साथ सताक्षी है। तो चलिए आपके चेहरे की रंगत को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं और एक बढ़िया सी स्टोरी आज आपके लिए मैंने चुनी है, वो आपको सुनाती हूँ। चीनी बांस यानी कि बैम्बू ट्री का बीज जब बोया जाता है तो पूरे 4 साल तक जमीन के ऊपर कुछ भी दिखाई नहीं देता। उसमें रोज पानी दिया जाता है, खाद दी जाती है, लेकिन एक छोटा सा पत्ता भी ना ऊपर नहीं आता है। ऐसे में लोग कभी कभी बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि भाई क्यों ये पेड़ जो है बढ़ने में इतना समय लेता है। लेकिन ठीक 5वें साल वो बांस का पेड़ 6 हफ्तों में 80 फीट तक ऊंचा हो जाता है। दोस्तों देखा जाए तो हमारी लाइफ भी ऐसी ही है। कई बार हम महीनों सालों मेहनत करते हैं पर कोई रिजल्ट नहीं दिखता, लेकिन याद रखिए उस वक्त आपकी जड़ें मजबूत हो रही होती हैं। जब आपका वक्त आएगा आपकी तरक्की दुनिया देखकर दंग रह जाएगी, इसलिए अपना पेशेंस कभी मत खोने दीजिए और मेहनत करते रहिए। एक और ट्रैक सताक्षी के साथ सुनिए रेडियो प्रसवानी पर और एंजॉय करते रहिए मेरे साथ इट हैपेंस।

यू नो, कभी कभी हमारा स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और हम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, और ये चीज मैंने देखा है तब ज्यादा होती है जब लोग अक्सर घर से निकलने में लेट हो जाते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि वो ऑफिस लेट पहुंचेंगे। उसके बाद कई लोग तो रास्ते में जब ड्राइव कर रहे होते हैं या पब्लिक कन्वेंस से भी आप जा रहे हैं तो आप पसीने पसीने हो जाते हैं भले ही बाहर ठंड पड़ रही हो, वो आपका स्ट्रेस लेवल होता है। तो भाई थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए ना खुद को, गहरी सांस लीजिए, डीप ब्रीदिंग कीजिए और जरा बाहर का नजारा देखिए। वो पक्षी, वो बर्ड्स जो सुबह सुबह उड़ रहे थे ना जब आप बिल्कुल सोकर उठे थे, वो अभी भी उड़ रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें पंख मिले हैं अपने सपनों को जीने के लिए, आसमान को छूने के लिए। आप भी बिल्कुल वैसे ही हैं, आप भी आसमान जरूर छुएंगे। ये स्ट्रेस लेकिन आपके साथ नहीं रहना चाहिए, है ना। अपने मूड को जब तक आप लिफ्ट नहीं करेंगे तब तक मजा कैसे आएगा। यू नो, आज हर इंसान ना स्ट्रेस लेकर घूम रहा है, मैं हूं, आप हैं, किसी न किसी छोटी छोटी बात पर हम स्ट्रेस में आ जाते हैं और फिर इतना ज्यादा ये स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है कि हमें गर्मी लगनी फील हो जाती है, हमें पसीने आने लगते हैं और कभी कभी तो हम इतना इंपेशेंट हो जाते हैं कि हम फेंट तक हो जाते हैं, है ना। तो भाई इतना इंपेशेंट होने की जरूरत नहीं है, चीजें अगर गड़बड़ हो गई हैं तो आप धीरे धीरे करके उन्हें लाइन पर लाने की कोशिश कीजिए, ना कि इतना इंपेशेंट होके इतना स्ट्रेस में आके उन चीजों को और खराब कर दीजिए। ध्यान रखिए अपना और आगे बढ़ते हैं एक और गाने के साथ, एंजॉय कीजिए और मेरे साथ सुनते रहिए इट हैपेंस रेडियो प्रस्वानी 107.01 एफएम।